एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 28, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जुलाई में

की 19 तारीख प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20

प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या। अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक का। दूसरा वर भी हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। अब सुनिए भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। इसमें आज के कलाकार हैं हरिओम शरण। सुनते हैं इनसे एक

कार्यक्रम समर्पण में आज आप सुन रहे थे कबीर भजन, कलाकार थे हरिओम शरण। कार्यक्रम अभिवरण, 7:45 होगा सुगम संगीत, 7:00 जोहार चाईबासा, 8:00 आप सुन सकते हैं समाचार प्रभात, 8:15 मॉर्निंग न्यूज, 8:30 प्रादेशिक समाचार, 8:40 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की महक, 9:00 विविधा कार्यक्रम, 9:10 पर पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी ये कार्यक्रम होगा, 9:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन, 10:00 फिर एक कार्यक्रम फिल्म संगीत का, 10:30 से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे और सांध्यकालीन सभा में 5:05 पर होगा फौजी भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम जय भारती, 6:30 खेती गृहस्थी, 6:00 मुख्य समाचार, 6:02 पर हो अखरा, 6:30 सन्मार्ग, 7:00 प्रादेशिक समाचार होते हैं, उसके बाद जिले में आजकल आपकी पसंद कार्यक्रम होगा 7:15, 8:00 रजनीगंधा।

पौने 9 बजे समाचार संध्या का प्रसारण होता है, 9 बजे इंग्लिश न्यूज, 9:15 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, 10 बजे गजलों का कार्यक्रम महफिल, 10:30 बजे सुनो के रंग, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज, और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था आज के कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, फिर हम आपको याद दिला दें कि पूर्वाह्न 9:10 से 9:30 तक आज होगा पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी का प्रसारण।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुभाषीष मित्रा की आवाज़ में सुगम संगीत।

जोहार चाईवासा, पेश खिदमत है यह दैनिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले ये है फिल्म अनजाना का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेंगे आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मैंने आए वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को ना हमरे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घरे बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए
5: मुकुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सिनकना ऐसे दुकुरा में ना आया, यापा में एरिया तपा में एरिया वाह बेटा निका,
6: आया न तुम दो बुंबई कोड़ा, पटन तुम गुंडे कोड़ा, आया हम दो कोदमरी कोड़ा, उड़ो पटन पटन तुम कितने कोड़ा, मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के मैं दोनों आसे यार सी कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम को यहाँ तब जाए तेरे काका जी वो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
7: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों

0: सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

कार्यक्रम जोहर चाईवासा में आखिरी पेशकश तलत अजीज़ और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है बाजार।

इस नगमे के साथ ही समाप्त होता है आज का कार्यक्रम जोहार चाई भाषा। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी चाई भाषा है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी,
4: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% है।
3: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली निम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

0: आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली विमनई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीन की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। पी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78 प्रतिशत हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सूत्रे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक सिखाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency reveals that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
7: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores a growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
6: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced two board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. The CBSE said that the overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. In Jammu and Kashmir, Sri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. The decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of pilgrims. The official said no onward movement of Yatris will be allowed from the Baltal and Nunwan Chandanwadi base camps until further orders. Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has also temporarily suspended the Vaishno Devi Yatra in view of the inclement weather advisory issued by the IMD. According to an official update issued by the Shrine Board, the decision has been made as a precautionary measure to ensure the safety and well-being of pilgrims. The authorities are continuously monitoring the weather situation and the Yatra will resume once conditions are considered safe for pilgrims. The IMD has warned of a fresh spell of heavy rainfall over parts of Jammu and Kashmir, with the possibility of flash floods, landslides and waterlogging in vulnerable areas. Administration has advised residents to avoid unnecessary travel and to stay away from water bodies. The Indian Meteorological Department has issued red and orange alerts for heavy to extremely heavy rainfall across Uttarakhand today. Continuous rainfall has been reported in several parts of the state, leading to a rise in the water levels of major rivers. More from our correspondent.
2: The IMD has issued a red alert for extremely heavy rainfall in Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district today. An orange alert has So being issued for heavy to very heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Pauri, Haridwar, Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar districts. Thunderstorm accompanied by lightning and intense spell of rain are also likely in several areas. Authorities have also been instructed to keep machinery and other essential resources ready along the landslide prone routes. Meanwhile, State Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman has appealed to residents, Chardham pilgrims and tourists to follow weather advisories and to avoid unnecessary travel. Sakshi Singh, Akashvani News, Dehradun.
6: With the southwest monsoon remaining active over Himachal Pradesh, intermittent rainfall continued across most parts of the state since last night. Meteorological Center in Shimla has issued orange and red alerts for heavy rainfall in various districts till 21st July and has advised people to remain vigilant. A report.
3: The Meteorological Center Shimla has issued a yellow alert for today in seven districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Kullu, Solan and Sirmaur, while an orange alert has been issued for Kangra, Mandi and Shimla districts. The department has also issued a red alert for heavy to very heavy rainfall on 20th July in Chamba, Sirmaur, Mandi and Kangra districts and on 21st July in Chamba, Sirmaur, Kullu, Mandi and Kangra districts. In view of the weather warnings, the state government has advised people to stay away from rivers, streams and landslide prone areas and to avoid unnecessary travel. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on a four-day official visit to India, will meet Vice President C.P. Radhakrishnan in New Delhi today. During the meeting, both leaders will review the entire spectrum of India-Tanzania relations and explore new avenues for future cooperation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will also call on the visiting dignitary today. The United States military has launched new airstrikes against Iran to punish the Iranian Revolutionary Guard for an attack in Jordan that killed two American service members, left one missing, and four requiring hospitalization. U.S. Central Command said the strikes were designed to further degrade Iran's ability to restrict the traffic of oil tankers through the Strait of Hormuz. The waterway accounted for roughly 20% of global oil supplies before the war. The new strikes came after the U.S. military announced its first troop deaths from direct Iranian fire since the opening days of the war, following a drone and missile attack on a base in Jordan on Friday. As part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to R. Madhavan, an acclaimed actor and director who has been honored with the prestigious Padma Shri.
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए बनाना चाहिए वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए
6: To listen to this conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold this morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR.

0: app and news on AIR official YouTube channel. In sports news, in FIFA World Cup, England secured the bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium last night. Bukayo Saka became the second England player to score a hat-trick in a World Cup knockout match after Sir Geoff Hurst in the 1966 final. It was the highest-scoring World Cup game since Hungary beat El Salvador 10-1 in 1982, and the 10 goals were the most in a third-place match. On the other hand, Kylian Mbappe surpassed Lionel Messi's career World Cup scoring record and took the lead in the Golden Boot race with a pair of second-half goals. Mbappe reached 22 career goals, one more than Messi. The star striker finished this World Cup with 10 goals, two ahead of Messi in the race for the Golden Boot, which is awarded to the tournament's top scorer. The stage is all set as Argentina and Spain will face each other in the finals at New York, New Jersey Stadium tonight. The match will begin at 12:30 a.m. as per Indian Standard Time. Kolkata, affectionately called the football capital of India, is in the grip of World Cup final fever as fans gear up for the high-octane final between Argentina and Spain. More from our correspondent.
1: Kolkata will stay awake tonight, so will the whole of Bengal. The FIFA World Cup final may be taking place thousands of miles away in New Jersey, but its excitement has reached every home in the state. Neighborhoods have been decked out in blue and white, and Lionel Messi jerseys are everywhere. The West Bengal Sports Department has arranged public screenings of the final at Nandan and the Actara open-air stage in Kolkata, besides venues across several districts. Giant screens have also come up at neighborhood clubs, housing complexes and multiplexes. Shongi Bandashwato, Akashvani News, Kolkata.
0: Meanwhile, Delhi Chief Minister Ekta Gupta has announced that restaurants, cafes and other eligible establishments across the city will be allowed to remain open till 4 a.m. tomorrow. In women's wrestling, Indian wrestler Kajal clinched the gold medal in the women's 76-kilogram category at the Budapest ranking tournament in Hungary yesterday. Facing Diamond Precious Guilford of the USA in a gripping gold medal clash, the young Indian wrestler exhibited immense tactical composure under pressure. India added two more silver medals to their haul through strong campaigns in the 53-kilogram and 57-kilogram weight divisions. In the 53-kilogram championship final, Indian wrestler Antim Pangal settled for silver after conceding her gold medal bout against Sweden's Emma Malmgren due to an injury. The series deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match will start at 3:30 p.m. Indian time. All-rounder Washington Sundar has been ruled out with a right hamstring injury sustained during the second ODI match in Cardiff. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mushtaba.
2: Thank you, Naresh. The news about India becoming the third country in the world with private orbital launch capability figures prominently on the front pages of newspapers this morning. India's maiden private orbital rocket mission takes off, writes Hindustan Times. India's private space era takes off with mission Agman, notes Sante Pioneer. 72nd National Film Awards, Article 370 wins Best Film, is a lead headline in the Sunday Statesman. Two U.S. military personnel killed as Iran ramps up retaliatory hits on neighbors is a top headline in the Times of India. Iran warns U.S. of unforgettable lessons, says Sunday Pioneer. In its editorial titled, Ordinary Life is Passé, our curated images are glowing perfection, we all pay a cost. The Indian Express writes that if beauty has become homogenized, so too has the visual record of what it means to live a good life. The paper writes that the point is not to celebrate collapse or to sneer at beauty, effort or pleasure. It is to be more honest about the price of perfection and more suspicious of the images that ask us to admire it. Under the caption, Never Mind Bastille, India has stormed Paris Haute Couture Week, the Economic Times reports that Paris is no longer an impossible summit, but a destination Indian fashion can repeatedly aspire to while sustaining a presence there. And finally, under the headline, Final Face-Off, the Sunday Tribune carries pictures of Argentina's Messi and Spain's Yamal as the two nations vie for the world football crown tonight. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Saira. And now before we end, bulletin the headlines once again. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warned students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third-place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगेगी सहयोग। साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन मामले में लोकायुक्त ने दर्ज शिकायत पर लिया संज्ञान। जिला खनन पदाधिकारी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राज्य सरकार अगले वर्ष तक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हृदय रोग के इलाज की स्थायी सुविधा झारखंड में ही कराएगी उपलब्ध। झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना। धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन के मामले में लोकायुक्त ने दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला खनन पदाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। लोकायुक्त ने आदेश दिया है कि जिला खनन पदाधिकारी आगामी अगस्त में होने वाली सुनवाई के दौरान अब तक की गई कार्रवाई और अवैध खनन की विस्तृत जांच रिपोर्ट अपने साथ प्रस्तुत करें। राज्य सरकार बच्चों के हृदय रोग से जुड़े इलाज की स्थायी सुविधा झारखंड में ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कल बोकारो में आयोजित हार्ट डिजीज कैंप में बताया कि झारखंड में फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चों का हृदय रोग के इलाज की सुविधा नहीं है। सरकार की कोशिश है कि अगले साल तक झारखंड में भी इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
4: में तो एकदम अबोध बच्चा जो जन्म से ही एक बीमारी लेके आता है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। और बिल्कुल, जैसे ये तो दिल की बीमारी है ही, और ये दिल को छू लेने वाली बात है कि अगर इस तरह के बच्चों का इलाज हो पाता है तो हम लोग इसको बहुत सफल मानते हैं। और फिर हम कोशिश करेंगे कि झारखंड में भी या तो देवघर एम्स में या रांची के सदर अस्पताल या रिम्स, ये व्यवस्था परमानेंट हो।
3: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के मोहुल डंगाल की मृतक रीना देवी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद की। इस दौरान परिवार के लोगों ने मंत्री को अस्पताल में रिश्वत मांगे जाने की जानकारी दी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सदर अस्पताल पहुंचे और वहां घटना की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन को घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
5: अभी हम लोग ने चंदा करके रूप में 50,000 रुपए दिए हैं। उनके जो परिवार के लड़का है तो हमने कहा कि हम सदर हॉस्पिटल में तुमको हम रखवा देते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ताकि तुम उनके तीन तीन बच्चे हैं, एक बच्चा बेंगलोर में था, इसको हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे भी हम लोग, और एक बच्चा है जो भी हम नामांकन कराएंगे। तो परिवार की जवाबदेही तो मेरी है। जिला प्रशासन से मांग करूंगा आप खोज निकालिए, उसको कार्रवाई कीजिए।
3: रांची जिले के बुढ़मू के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा के खिलाफ रैयतों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। रैयतों ने आरोप लगाया है कि जमीन से जुड़े काम के बदले उनसे रिश्वत की गई थी। इस मामले में गिरफ्तार बुढ़मू सीओ सचिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उसके भाई गौतम किशोर रवि की डिमांड अवधि पूरी हो चुकी है। सीबीएसई ने कक्षा दसवीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा दसवीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। सीबीएसई के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जेएसएससी की झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा आज रांची जिले के 127 केंद्रों पर आयोजित होगी। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। धनबाद में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स DMTF ने कार्रवाई कर धनबाद के एना कोलियरी और कतरास कोलियरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान में 40 वाहनों को जब्त किया। इस मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
6: एना कोलियरी और कतरास कोलियरी में हम लोग के द्वारा जांच किया गया संयुक्त रूप से, और उसमें कुछ मोटर व्हीकल के अंतर्गत वायलेशन पाया गया और माइनिंग के द्वारा भी कुछ चालान में विसंगति पाई गई, जिसके आरोप में लगभग 40 गाड़ियों को सीज करके थाना को सुपुर्द किया गया है और वाहन स्वामियों से कागजात की मांग की गई है वाहन की, और कागजात प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
3: सिमडेगा के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सन्हा ने कहा कि लोग अपने वाहनों का बीमा अवश्य कराएं, इससे वाहन मालिक परेशानी से बचेंगे, वहीं दुर्घटना पीड़ितों को न्याय भी मिल सकेगा।
7: हमारा स्कीम डीएलएसए का वो जन जन तक पहुंच पाया है, और इस संबंध में मैंने आज मोटर व्हीकल एक्ट पर अपनी बातें रखी और खासकर इस बात पर जोर दिया बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी नहीं चले, उसके लिए मैंने डीटीओ साहब को भी निर्देशित किया है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे राज्य जिले में एक भी गाड़ी ऐसी न हो जो कि इंश्योरेंस के बिना चले।
3: मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रांची में आज मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 20 जुलाई के लिए विभाग ने कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत रांची के खेलगांव, बीआईटी मेसरा और जैपवन मैदान में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर अगले चरण में जगह बनाई। राज्य परियोजना पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि सुब्रतो कप जैसी प्रतियोगिताएं स्कूली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने फीफा विश्व कप के आज होने वाले फाइनल मुकाबले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची में 26 जुलाई से फुटबॉल का रोमांच, दर्शकों की फ्री एंट्री पर टिकट लेना होगा। हिंदुस्तान ने कोयले की गैस से दम घुटने से मां बेटे की मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, निवेश आकर्षित करने में झारखंड इमर्जिंग श्रेणी में, प्राकृतिक संसाधन राज्य की ताकत पर कारोबारी माहौल बनाना चुनौती।

झारखंड में ही कराएंगे उपलब्ध। झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना। धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
2: ये आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। माटी की महक लोक संगीत के इस दैनिक कार्यक्रम में आज सुनिए हो लोकगीत। कलाकार हैं बाबूराम सोए और साथी।

माटी की महक लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे बाबूराम सोए और साथियों से हो लोकगीत।

इस समय पूर्वाह्न के ठीक 9 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आज का विविधा कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक कविता। कविता का शीर्षक है मुकद्दर और फितरत। मुकद्दर ने हथेली पर जो लकीरें लिख दी थीं, फितरत ने उन्हें पढ़ने का सलीका सिखा दिया। कुछ लोग हर मोड़ पर किस्मत को कोसते रहे, कुछ ने उसी मोड़ को अपनी मंजिल बना लिया। हवा का काम चलना है, दरिया का बहना, फितरत कभी अपने उसूलों से मुकरती नहीं। मुकद्दर दरवाजे दिखाता है मगर दस्तक हमेशा इंसान को देनी पड़ती है। जो बीज दिल में यकीन का बोता है वही वक्त आने पर साया भी पाता है। फितरत कहती है फूल बनो तो खुशबू बांटो, चिराग बनो तो अंधेरों से शिकायत मत करो। मुकद्दर की किताब में सब कुछ लिखा हो यह ज़रूरी नहीं। कुछ सफ़हे इंसान अपने किरदार से भी लिखता है। सिंह, मुकद्दर और फितरत की जंग में जीत उसी की होती है जो अपनी फितरत को नेक रखे और मुकद्दर पर यकीन रखें।

शामीन, आज के विविधा कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक शीर्षक गीत। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

यह आकाशवाणी चाईबासा है। 9:10 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे के मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमैद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सिलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सिलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
3: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
2: माधवन की खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
3: जी हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबी नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ही ले लीजिए जहाँ पे अजीत दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजीत दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
2: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
3: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
2: और आपने एक्सेप्ट किया, ये भी
3: मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
2: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
3: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हैं। इट्स अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
2: आप एफसीआई से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
3: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था। जो वो देश की खासियत थी वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
2: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाम इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग भी थी। साथ में आपने फिल्म बनाई लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
3: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबी नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आए देखा या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया उस सेट पे, जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
2: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से देखते हैं युवाओं पर इसका इफेक्ट?
3: नंबी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया जिसकी वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुंदर को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नंबी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
2: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
3: बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड हैं। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
2: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
3: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन्स या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आएं, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए, तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
2: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
3: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स, मनु, तो वो एक प्रोग्रेशन ही था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है। विक्रम वेरा ले लीजिए, फिर सारा खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
2: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
3: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
2: क्राफ्ट
3: नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है, तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है, कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नियत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नियत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। अब हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो दर्द दूर हो जाता है।
2: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
3: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें। अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम। और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, या मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
2: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
3: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेपिटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
2: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है? आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो या मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
3: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरेंद्र। एक और फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारी इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझमें छोड़ जाते हैं।
2: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
3: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल, इट वॉज दैट वेरी गुड। इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट। और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ, उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
2: रियल लाइफ हीरोज की आप बात कर रहे हैं, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
3: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
2: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
3: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पे हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी।
2: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें। और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण DD News के सहयोग से किया गया।
0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी चाईवासा है FM के 101.7 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। इसमें सबसे पहले ये आवाज़ सुखविंदर सिंह की, फिल्म का नाम है चलते चलते।

चांदनी। यह है फिल्म का नगमा। युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता की।

चश्मे बद्दूर, यह गया इस फिल्म का नगमा यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म डैडी का नगमा, आवाज़ें तलत अजीज़ और साथियों की।

और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म संगीत का ये दूसरा कार्यक्रम आ गया, जिसका आगाज आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों से। फिल्म का नाम है बलमा।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था रज़िया सुल्तान। कयामत से कयामत तक, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये दो गाना। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वान्ह के 10:30 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो चुके हैं और इस वक्त हम खास आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे कुछ ही पलों में।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपकी अपनी प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज एक बार फिर इस प्रोग्राम के सफर में आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
2: और साथ में अमृता। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी की असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने में है।
1: क्या बात कही अमृता। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं,
2: जबकि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कल से बेहतर आज को बनाने का प्रयास करते हैं। हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है कुछ नया सीखने का, अपनी कमियों को दूर करने का और अपने सपनों की ओर एक कदम आगे बढ़ाने का।
1: बिल्कुल, और याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की एक सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। तो आइए इसी विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आज के प्रोग्राम के सफर की शुरुआत करते हैं और कहते हैं जोहार।

0: जोहार रांची में हम आपको लिए चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहां 19 जुलाई के दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1969 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।
1: इसका मुख्य उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाएं केवल धनाढ्य लोगों और शहरों तक सीमित न रहे, गांव, किसान, मजदूर और समाज के कमजोर वर्गों तक भी पहुंच सके।
0: इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बढ़ी और कृषि, लघु उद्योग और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता मिलने लगी, जो कि विकास की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ।
1: सन 1969 में ही नासा का ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन अपोलो 11 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्ष में पहुंचा। ये मानव इतिहास का पहला मिशन था जिसमें इंसान चंद्रमा पर पहुंचा और 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे।
0: सन 1980 में आज ही के दिन मॉस्को ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई। भारत ने पुरुष हॉकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और भारतीय खेल इतिहास में एक नई ऊर्जा भर दी।
1: सन 2007 में 19 जुलाई को ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, जो कि भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक क्षण था।
0: और सन 2004 में 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ।
1: सन 1900 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली, जबकि दुनिया की पहली मेट्रो सेवा लंदन में शुरू हो चुकी थी।
0: सन 2008 में अमेरिका ने प्रशांत महासागर में लक्ष्य निर्धारित कर लंबी दूरी तक मार कर सकने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया।
1: सन 2003 में रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी मालेथान को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने।
0: आज ही के दिन सन 1941 को मशहूर कार्टून जोड़ी टॉम एंड जेरी ने पहली बार अपने नामों के साथ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द मिडनाइट स्नैक में स्क्रीन पर दस्तक दी थी। यहीं से शुरू हुई बिल्ली और चूहे के उस ऐतिहासिक जंग की कहानी जिसने बच्चों और बड़ों सभी के दिलों में खास जगह बना ली।
1: आगे की बातों से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब उन मशहूर शख्सियतों की बातें जिन्होंने आज ही के दिन यानी 19 जुलाई को इस धरती पर कदम रखा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1827 ईस्वी को बलिया जिले में 1857 के विद्रोह की चिंगारी माने जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त मंगल पांडे का जन्म हुआ था।
1: सन 1900 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के महान नेता और साहित्यकार खूबचंद बाघेल का जन्म हुआ था।
0: सन 1938 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन इन्होंने विज्ञान

0: के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञान साहित्य में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने फ्रेड हॉयल के साथ भौतिकी के हॉयल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
1: सन 1909 में मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री नालापत बालमणि अम्मा का भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन इन्हें मानव महिमा के नबी के रूप में वर्णित किया गया था और कविताओं की प्रेरणा स्रोत कहा गया था।
0: सन 1948 में आज ही के दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे राधा बिनोद कोइजाम का जन्म हुआ था और सन 1948 में ही भारत के भूतपूर्व 39वें मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का भी जन्म हुआ था।
1: सन 1956 में भारतीय कानूनी सलाहकार जिया मोदी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्हें कॉर्पोरेट विलय और अधिग्रहण कानून, प्रतिभूत कानून, निजी इक्विटी और परियोजना वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब बातें करियर के उड़ान की। सही करियर चुनना लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को सुकून और जॉब सेटिस्फैक्शन देता है।
1: पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि कैसे इंडस्ट्रीज के रुझान बदलते हैं और कुछ जॉब्स को अप्रचलित बना देते हैं, जबकि कुछ को और भी ज्यादा वैल्यूबल।
0: इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप भविष्य में संभावित बेस्ट करियर विकल्पों का चुनाव करें। ऐसा ही एक करियर ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। दुनिया भर की कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हार्ड और क्रिमिनल माइंडेड एलिमेंट से निपटने में मदद के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पर भरोसा करती हैं।
1: एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में आप कंपनियों से परामर्श ले सकते हैं, ताकि उन्हें संभावित साइबर थ्रेट्स और को समझने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आप उनके साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट्स को मजबूत बनाने में उनकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार होंगे,
0: ताकि वे हैकर्स और टेक्निकल प्रॉब्लम से निपट सकें। और इसके लिए जिस कोर्स की जरूरत है वो है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री। तो अपने करियर में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे ही स्किल्स और कोर्सेज का चयन करना होगा जिनकी भविष्य में मांग बनी रहे।
1: और दिल में अपनी मंजिल को पाने का जुनून हो तो दिल से यही आवाज आती है, क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां।

0: दोस्तों कहते हैं ना कि बारिश की बूंदों में है खुशबू पुराने किस्सों की। चलो ढूंढें वही रास्ते जो दिल के करीब हों।
1: मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी गर्मी या फिर बरसात, हर मौसम में धरती की अपनी अलग खूबसूरती होती है और एक अलग सी मुस्कान होती है।
0: जी हाँ, और इसी मुस्कान से खींचे चले आते हैं पर्यटन के शौकीन, ताकि हर मौसम का वो पूरा पूरा लुत्फ उठा सकें। अब बारिश कई दिनों से हो रही है, लेकिन घूमने का शौक रखने वाले भला कहाँ मानने वाले हैं।
1: अगर आप भी इस बारिश के मौसम में घूमने का मन बना रहे हैं तो क्यों ना चलें महाराष्ट्र के माथेरान की ओर। वो छोटा सा हिल स्टेशन जहाँ बारिश की हर बूंद हवा के साथ झूमती नजर आती है।
0: माथेरान अपने प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और प्रदूषण से मुक्त हवा के लिए प्रसिद्ध है। ये छोटा सा सुंदर हिल स्टेशन अपने अनेकों वनस्पतियों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कई औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल हैं।
1: क्या आप जानते हैं कि माथेरान को एशिया का एकमात्र वाहन मुक्त हिल स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पैदल घूमते हुए सुंदर जंगलों से गुजरना और नैनाभिराम दृश्यों का आनंद उठाना एक अलग सा अनुभव देता है।
0: बरसात में यहाँ की लाल मिट्टी की खुशबू, पेड़ों से झड़ती बूंदें और बादलों की चादर सबको मोहित कर लेती हैं। यहाँ के चारलोट लेक के किनारे बैठकर बारिश की फुहारों के साथ चाय की चुस्कियाँ लेना मानो जिंदगी का सबसे सुकून भरा लम्हा हो।
1: और लुइसा पॉइंट या मैनोरमा पॉइंट से बादलों का समुद्र देखना जैसे आप आसमान के गोद में बैठ गए हों।
0: ये बरसात, ये बादल, ये पहाड़ों की फिजा, दिल कहे ठहर जाओ, बस यही है सजाओ जफा।
1: तो अगर बारिश में भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के करीब कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं तो माथेरान आपका इंतजार कर रहा है। पैदल रास्तों पर चलिए और पेड़ों के बीच ठहरिए और बारिश को महसूस कीजिए, ताकि आपका सफरनामा यादगार बन जाए।

0: जोहार रांची में अब बातें हमारे देश की अद्भुत और समृद्ध संस्कृति की। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ हर प्रदेश की अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं और उत्सव हैं। लेकिन इन सबको एक सूत्र में पिरोती है हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत।
1: ऐसी ही एक अनूठी परंपरा है केरल का रामायण मासम, जो श्रद्धा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर संगम है।
0: मलयालम कैलेंडर का अंतिम महीना कर्कीडकम, जो कि मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक का समय है, केरल में आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन का समय माना जाता है।
1: इस पूरे महीने को रामायण मासम कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान घरों और मंदिरों में प्रतिदिन अध्यात्म रामायणम का श्रद्धा पूर्वक पाठ किया जाता है
0: और संध्या के समय परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भगवान श्री राम के आदर्शों, माता सीता के धैर्य, लक्ष्मण की सेवा भावना और हनुमान जी की अटूट भक्ति का स्मरण करते हैं।
1: यही कारण है कि कर्कीडकम केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, पारिवारिक एकता और नैतिक मूल्यों का जीवंत उत्सव बन जाता है।
0: ये महीना हमें सिखाता है कि जीवन की हर कठिन परिस्थिति में धैर्य, सत्य, त्याग, मर्यादा और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं।
1: ये परंपरा केवल धर्म से ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ने का माध्यम भी है। ये सांस्कृतिक उत्सव हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है।
0: रामायण मासम हमें ये संदेश देता है कि जीवन में सत्य, मर्यादा, करुणा, कर्तव्य और धैर्य जैसे मूल्य कभी पुराने नहीं होते। बदलते समय में भी ये आदर्श उतने ही प्रासंगिक हैं जितने की त्रेता युग में थे।
1: भारतीय संस्कृति की जड़ें जितनी गहरी हैं, उतनी शाखाएं विशाल और जीवनदायी हैं। ऐसी ही एक शाखा है अध्यात्म रामायणम, जो केवल भगवान श्री राम की जीवन गाथा नहीं,
0: बल्कि भारतीय संस्कृति, आदर्शों, मानवीय मूल्यों और जीवन दर्शन का एक जीवंत दस्तावेज है।

0: जुहारा जी में अब कुछ बातें सेहत की। इन दिनों हर रोज मौसम बदल रहा है, कभी बादल आ जाते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो कभी धूप निकल आती है और गर्मी सी होने लगती है। और इस बदलते मौसम में अक्सर वैसे लोग बीमार पड़ जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।
1: इस मौसम में वायरल बुखार होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है।
0: ऐसे में आप कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, साथ ही कुछ घरेलू नुस्खे भी आपको इन रोगों से निजात दिला सकते हैं।
1: इनमें से एक है अदरक। ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मौसमी बुखार में अदरक के काढ़ा का सेवन फायदेमंद होता है।
0: एक दूसरी फायदेमंद चीज है लहसुन। लहसुन की कुछ कली को शहद में डालकर छोड़ दें और कुछ समय बाद इसका सेवन करें। इससे भी आप शीघ्र वायरल फीवर से निजात पा लेंगे, साथ ही ये आपके इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा।
1: एक और चीज जो हर घर में होती है वो है तुलसी। तुलसी से घर का वातावरण साफ और शुद्ध होता है। तुलसी और पीसी लौंग के काढ़े अगर हर 2 घंटे में के अंतराल पे लिए जाए तो इससे भी बुखार से छुटकारा पाया जा सकता है।
0: लेकिन इन उपायों के बावजूद बुखार ना उतरे या तबीयत ज्यादा खराब हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

0: और आखिर में चलते चलते बस ये कहना चाहेंगे कि उम्मीद की एक किरण, विश्वास की एक डोर और प्रयास का एक कदम, यही जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं।
1: जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर सूर्योदय अपने साथ एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। इसीलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए।
0: इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है जोहार रांची के पन्नों को यहीं समेटने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के जोहार रांची से लेते हैं इजाजत और कहते हैं
1: जोहार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और ये वक्त है हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है विशाल शेखर ने और फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

गलियों की रासलीला रामलीला, आइए सुनते हैं इस फिल्म से अरिजीत सिंह को। इस गीत के बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने और धुन बनाई है संजय लीला भंसाली ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने।

अगली फरमाइश हमने ली है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा की, और इन्होंने सुनना चाहा है अरिजीत सिंह की आवाज में राधे श्याम फिल्म का गीत। गीत और संगीत मिथुन का है।

आपकी पसंद फरमाइशी गीतों में हमने अगली फरमाइश ली है, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। और इन्होंने सुनना चाहा है तनु वेल्स मनु फिल्म से मोहित चौहान को। गीत के बोल लिखे हैं राजशेखर ने और धुन बनाई है कृष्णा ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और आपकी पसंद कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। और इन्होंने सुनना चाहा है नीति मोहन, शादा फरीदी और सुदेश भोसले को शमशेरा फिल्म से। गीत और संगीत मिथुन का है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं और ये वक्त है बहनों के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम को लेकर आपसे मुखातिब हैं राखी शर्मा और रानी शुक्ला।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। उम्मीद है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपने परिवार के साथ सुखद और सुरक्षित भविष्य के सपने भी देख रही होंगी। कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत से सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां, मैं राखी और मेरे साथ एक प्यारी सी चुलबुले सी हंसती मुस्कुराती हुई सखी भी बैठी हुई हैं, आपकी प्यारी प्यारी, जो आपसे मुखातिब होने के लिए बहुत ही बेताब हैं। हाँ। आप हैं रानी।
1: बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। और राखी, अभी तुमने भविष्य की बातें की, सपनों की बातें की, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर महिला अपने परिवार के लिए न जाने कितने सपने संजोती है। लेकिन बहनों, सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए सही समय पर सही कदम उठाए जाते हैं और प्रयास सही दिशा में किए जाते हैं।
0: और बात जब परिवार के भविष्य की हो तो प्यार और मेहनत के साथ साथ समझदारी भरी आर्थिक योजना भी बहुत जरूरी हो जाती है बहनों। और यही वजह है कि आज के समय में हर महिला के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समझ होना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रही होंगी कि ये क्या होता है भाई।
1: तो बहनों, इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है अपनी आय, खर्च, बचत और भविष्य की जरूरतों की ऐसी योजना बनाना जिससे हमारा आज भी संतुलित रहे और आने वाला कल भी सुरक्षित हो। क्योंकि समझदारी की पहचान केवल कमाई से नहीं बल्कि उस कमाई को सही ढंग से संभालने से होती है। कहे तो पैसों का सही प्रबंधन, सही योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल, अगर हम सोचते हैं कि ये क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी पैसों का प्रबंधन, केवल बड़े कारोबार या नौकरी करने वालों के लिए या फिर वित्त विशेषज्ञ के लिए होता है। लेकिन सच तो ये है बहनों कि हर गृहिणी, हर कामकाजी महिला और हर बेटी के लिए इसके जानकारी होना बेहद जरूरी है।
1: हाँ बहनों, चाहे घर की आय कम हो या ज्यादा, अगर खर्च सोच समझ कर किया जाए, नियमित बचत की जाए और भविष्य के लिए पहले से योजना बनाई जाए तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। और इसलिए आज हम बात करेंगे कि महिलाएं कैसे करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
0: ये तो बहुत आसान है क्योंकि महिलाएं तो हमेशा से बचत और समझदारी की मिसाल रही हैं, है ना रानी?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: कभी साड़ी के आंचल में कुछ पैसे संभाल कर रखती हैं, कभी चावल के डिब्बे में थोड़ी सी बचत करना, या फिर घर की छोटी छोटी जरूरतों को संतुलित करके और संतुलन बनाकर चलना, ये महिलाओं की दूरदर्शिता और कुशल प्रबंधन ही तो दिखाता है ना। और ऐसे भी कहते हैं कि महिलाएं बड़ी अच्छी प्रबंधक हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन राखी, आज के बदलते समय में बचत के साथ साथ पैसों की सही योजना बनाना, अपनी आर्थिक जानकारी बढ़ाना और भविष्य की जरूरतों के लिए पहले से तैयारी करना भी बहुत जरूरी हो गया है।
0: और इसके लिए सबसे पहला कदम है बहनों, बजट बनाना। महीने की आय और खर्च का एक सरल सा हिसाब लिखिए बहनों। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ बचत की जा सकती है।
1: हाँ, और इसी के साथ एक और जरूरी बात है राखी, कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझना। हर आकर्षक या पसंद की चीज तुरंत खरीदना जरूरी नहीं होता। कई बार थोड़ा इंतजार और समझदारी से लिया गया फैसला हमें भविष्य में बेहतर आर्थिक सुरक्षा देता है।
0: और बचत की आदत कभी छोटी नहीं होती बहनों। बचत चाहे 100 रुपये की हो या 1000 रुपये की, लेकिन नियमित बचत होना जरूरी है। हर महीने कुछ पैसों की बचत करना भी भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और कहते हैं कि बचत का सबसे पहला जो नियम है ना रानी, कि पहले बचत करो फिर खर्च करो। हाँ। जबकि अक्सर हम ये करते हैं कि पहले खर्च कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो बचता है उसे बचत के रूप में रखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन राखी, मुश्किलें कभी बताकर नहीं आती। अचानक बीमारी, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा कोई खर्च या परिवार में कोई जरूरत हो सकती है। ऐसे समय में छोटी छोटी बचत बड़ी मददगार साबित होती है। और इसलिए कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटी छोटी बचत से भविष्य संवरता है।
0: और यही सोच हर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है। और आजकल डिजिटल लेन देन भी बहुत बढ़ गया है बहनों, इसलिए जो जब आप भुगतान करें तो ऐसे समय में सावधानी भी करनी बहुत ही जरूरी होती है।
1: बिल्कुल बहनों, अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें। अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें। छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है बहनों।
0: और अगर आप सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खेती या कोई भी छोटा व्यवसाय करती हैं तो उसकी आय और खर्च का अलग रिकॉर्ड भी रखें। इससे पता चलता है कि कितना लाभ हो रहा है और आगे कैसे बढ़ना है।
1: हाँ, और एक बात जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं राखी, वो है आपातकालीन बचत और बीमा। थोड़ी सी तैयारी मुश्किल समय में परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। महिलाओं के लिए सरकार की कई बचत और स्वरोजगार योजनाएं भी हैं।
0: इनके बारे में जानकारी लेना और उनका लाभ उठाना भी आर्थिक रूप से सशक्त बनने का एक अच्छा कदम है। लेकिन सिर्फ बचत ही नहीं, सही जानकारी के साथ सही जगह निवेश करना भी बेहद जरूरी है बहनों।
1: बिल्कुल, और एक अच्छी आदत जो हर घर में बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए वो है बचत की आदत। जब बच्चे छोटी उम्र से ही पैसों की कीमत और बचत का महत्व समझते हैं राखी, तो बड़े होकर वे आर्थिक रूप से अधिक जिम्मेदार बनते हैं।

0: जहाँ तक हो सके अनावश्यक कर्ज लेने से बचें, समय समय पर अपने खर्चों की समीक्षा करते रहें और सबसे जरूरी बात, आर्थिक फैसलों में खुद भी जानकारी रखें, परिवार के साथ मिलकर चर्चा करें।
1: हाँ, सही जानकारी और जागरूकता दोनों मिलकर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं बहनों। आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत की बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि सही सोच, अच्छी आदतों और समझदारी भरे फैसलों से होती है।
0: और पता है रानी, आज का दिन तो अपने आप में बहुत ही खास है। वो कैसे पता है? आज है 19 जुलाई और ये दिन बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में देश के जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को आम जनता तक सरलीकरण करके पहुंचाना है।
1: बिल्कुल, और इस फैसले ने बैंकिंग को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया और आज देश की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, जनधन खातों, डिजिटल बैंकिंग और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।
0: हाँ बहनों, याद रखिए, सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि सही बचत, सही निवेश और सही वित्तीय निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है, और साथ ही जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न या ITR दाखिल करना।
1: बिल्कुल बहनों, यदि आपकी आय आयकर नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल करने के दायरे में आती है तो समय पर ITR दाखिल करना आपकी जिम्मेदारी भी है और ये आपके हित में भी है। और यदि आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो देर न करें, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। समय रहते अपना रिटर्न दाखिल करें ताकि किसी भी तरह की असुविधा और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। क्यों राखी?
0: तो बहनों, समय पर किया गया हर वित्तीय कार्य आपके सुरक्षित और सशक्त भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है, और आर्थिक रूप से जागरूक होना सिर्फ कमाई और बचत तक सीमित नहीं है बल्कि अपनी सभी वित्तीय जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझना भी है। और इससे क्या होता है कि भविष्य के लिए एक आशा बनती है, एक उम्मीद बनती है कि हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित होगा। तो इसी आशाओं के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और रानी।
2: बहनों अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, बच्चों को दे बैंकिंग की शिक्षा, इस विषय पर। भेंट वार्ताकार हैं सतीश कुमार पांडे और इनसे बातें कर रही हैं आपकी रेडियो सखी राखी शर्मा।
3: बहनों आज के अर्थ प्रधान युग में बैंकिंग की सही जानकारी होना सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बेहद आवश्यक है, ताकि वो एक सतर्क, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनकर जीवन जिए और उनका जीवन सहज भी हो सके। तो आइए आज अपने कार्यक्रम में हम इसी विषय पर जानकारियां लेते हैं, बातें करते हैं, और इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। आप हैं सतीश कुमार पांडे, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार।
4: धन्यवाद राखी जी हमें और निमंत्रण देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।
3: जी तो आते हैं हम अपने प्रश्न पे, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को बैंकिंग की जानकारी देना क्यों जरूरी है।
4: जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर बच्चे शुरू से ही थोड़ी थोड़ी बैंक की जानकारी रखें तो परिवार का हिस्सा और समाज का हिस्सा, सभी बच्चे भी हैं, तो पैसे की कीमत उन्हें समझना अगर बच्चों को शुरू से अगर हमें सिखाया जाए तो आगे चल के समाज के विकास में बहुत ही मदद मिलेगा। भविष्य में किस तरह से कर्ज लेना है या फ्रॉड से बचना है, गलत निवेश से कैसे बच सकते हैं या आत्मनिर्भर कैसे बनना है, कहीं ना कहीं ये सब चीज फाइनेंशियल रिलेटेड है, तो इसकी जानकारी बच्चों को देने से और परिवार और समाज सबके लिए अच्छा है ये।
3: जी तो किस उम्र के बच्चों को बैंकिंग की जानकारी देने की शुरुआत कैसे मतलब करनी चाहिए, किस उम्र से?
4: शुरू से, जैसा कि हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं कि जब बच्चे 5 साल 7 साल के रहते हैं तो हम लोगों ने गुल्लक वाली जो एक परिवार में चलता था कि बच्चों को गुल्लक देते, कहीं से पैसा मिला बच्चे गुल्लक में डाल देते थे तो एक अलग ही उनको खुशी मिलती थी। तो छोटे उम्र में 5 साल 6 साल से गुल्लक क्या है, बचत क्या एक कॉन्सेप्ट है, तो सेम चीज जब थोड़ा बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अब ये समझाना चाहिए कि 8-10 साल के जब हो गए कि ये गुल्लक एक तरह से बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए बैंक में। उनको जो गुल्लक देखते थे पहले वजन उठा उठा करके, अब वो अपने अकाउंट में पासबुक देखेंगे या छोटी छोटी रकम जमा जो उनको दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब थोड़े से और बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको फिर ATM ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शन, ये सभी, क्योंकि अब ये समय की मांग है कि बच्चों को भी सब जानकारी होना है। ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ कैश ही नहीं हो गया, अब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब हो गया है, तो इनकी जानकारी बच्चों को धीरे धीरे धीरे धीरे हम परिवार में देख देख के सीख लेते हैं और उनको ऐसे वातावरण में रखेंगे तो अच्छी जानकारी होगी उन्हें। तो शुरुआत तो देखा जाए तो 5-7 साल से हो जाता है और धीरे धीरे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उनको सिखाते रहना है, हमें जो अच्छी व्यवस्था है बैंकिंग की उस चीज को हमको गाइड करते रहना है।
3: जी आपने बहुत अच्छी बात कही गुल्लक वाली, बचपन में हमने भी तो गुल्लक में पैसे जमा किए ही है ना।
4: जी जी बिल्कुल
3: जी तो बचत की बात की शुरुआत तो आपने कर ही दी, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों में बचत की आदत कैसे डालें?
4: अब बच्चों को छोटे छोटे, जैसे हम लोग नहीं टारगेट देते हैं कि एक खिलौना 500 रुपया इकट्ठा हो जाएगा तो हम ये चीज खरीद लेंगे, साइकिल खरीद लेंगे या तुम्हारे लिए एक कैरम बोर्ड खरीद लेंगे, तो ये सब कुछ कुछ उदाहरण दे करके हम उनको बचाने बचत करने की मोटिवेशन दे सकते हैं बच्चों को कि और कुछ जैसे अच्छे तुम नंबर लाते हो तो 100 रुपये हमारे तरफ से भी जुड़ जाएगा और इस तरह से बच्चे उसमें जोश में भी रहते हैं और इसी बहाने वो सेविंग करना भी सीख जाते हैं कि हम बचत करेंगे तभी तो इस चीज़ को हम पा सकते हैं। तो इनाम पाने की इच्छा तो हर उम्र में होती है, बच्चों में होती है, बड़ों में भी होती है। तो जब उन्हें लगेगा कि नहीं हम थोड़ा बचत करेंगे तो साथ में मम्मी से पापा से इनाम मिल जाएगा तो उन्हें इसको इस आदत को विकसित करने में बहुत मदद मिलता है और इस तरह से हम विकसित करने में मदद कर सकते हैं बच्चों को।
3: जी, बच्चों को लक्ष्य दें, है ना?
4: हाँ, यही हमारा मानना है कि मैंने इस तरह से हम माहौल बनाएंगे तो बच्चों में अच्छी आदत विकसित होगी
3: जी। उन्हें लगेगा कि वही बचत करने के बाद ही हम ये पा सकते हैं।
4: हाँ, ये नहीं कि कहीं से पैसा ऐसे नहीं आएगा, तो सेविंग करने सेव करेंगे उसी चीज से हम उसको पा सकते हैं, तो एक हैबिट है
3: जी। आप बैंक में हैं तो हम ये बताएं कि बच्चों के लिए बैंक अकाउंट के क्या फायदे हैं?
4: बैंक अकाउंट हम लोग बच्चों को इस तरह से कोशिश करते हैं बताने के लिए कि घर में पैसा रखेंगे तो घर में रखना रिस्क बहुत ज़्यादा है, चोरी होने की संभावना है या मिसयूज हो सकता है उसका, लेकिन बैंक अकाउंट में रहेगा तो पैसा बचत भी रहेगा और पैसा कभी भी निकाला जा सकता है, जब कुछ ज़रूरत पड़े तो हम थोड़े थोड़े बचत निकाल सकते हैं और अगर बचत अकाउंट में रहेगा तो बैंक उस पर थोड़े थोड़े ब्याज भी देता है, जैसे फिलहाल अभी आज का जो है 2.5% ब्याज, अगर खाते में सिर्फ पैसा है तो 2.5% ब्याज मिल जाएगा, लेकिन घर में अगर है, अगर 1,000 रुपये है तो 1,000 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इस तरह से ये कर सकते हैं कि बच्चों को कि घर में मत रखो, बैंक में रखो तो पैसा सुरक्षित भी है और उस पर थोड़ी थोड़ी बचत उसमें बढ़ते हुए जाती है ब्याज के तौर पे। और दूसरी साक्षरता हमको अकाउंट से ये देखना है कि अकाउंट से रहेगा तो हर जगह पर हमको कैश लेके नहीं चलना पड़ेगा। अब आजकल के ज़माने में जो समय की मांग है कि ATM कार्ड हो गया, UPI कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो ये सब चीज़ की भी अकाउंट में रहेगा तो इस चीज़ से हम लिंक हो करके हम सब जगह पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये अकाउंट में रखने की सुविधाएं हैं, ये जो कैश रहेगा घर में तो वो सुविधा उनको नहीं मिल पाएगा
3: जी।
4: और दूसरा है कि आजकल गवर्नमेंट भी सब जगह डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत बच्चों के स्कॉलरशिप वगैरह जो भी है वो डायरेक्ट अकाउंट में ही आता है, तो अकाउंट होना अनिवार्य है
3: जी। आजकल तो भाई बैंक में लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ती है, सारा काम घर बैठे कर लेते हैं। तो जो डिजिटल बैंकिंग है उसका उपयोग बच्चों को कैसे समझाएं और उससे होने वाले जो थोड़े खतरे हैं असावधानी बरतने से उससे कैसे उन्हें अवगत कराएं, ये सब कैसे किया जाए?
4: बच्चों को डिजिटल सेफ बैंकिंग सिखाना बहुत अनिवार्य है क्योंकि बच्चे छोटी छोटी बातों में मोटिवेट होकर के कई जगह गलत स्टेप ले लेते हैं, तो उनको UPI जो उसका जेन्युइन साइट है उसका उनको इस्तेमाल करके सिखाना आवश्यक है, कौन सा ऐप जेन्युइन है कौन सा नहीं जेन्युइन है वो उसकी जानकारी देना चाहिए और अपना किसी भी फर्जी लिंक पर ना जाएं, ये बहुत जगह एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है, OTP और पिन किसी को भी शेयर ना करें और कोई आपसे डिमांड नहीं करता जब तक आप नहीं कहीं पेमेंट के लिए जा रहे हैं और बैंक तो आपसे OTP और पिन कभी मांगता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल संज्ञान में रखना है कि OTP और पिन कहीं भी किसी को देना नहीं है जब तक कि हम पेमेंट स्वयं नहीं करते, ऑनलाइन में किसी भी चीज़ के लिए नहीं लगता है। और दूसरा है कि बिल्कुल इस चीज़ से डरना नहीं है क्योंकि उसमें आजकल लिमिट सेट करने का भी माध्यम है, जैसे अब कार्ड है, कार्ड लग रहा है कि हम POS चैनल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं या हम उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि हम 1,000 से ऊपर का के अंदर में ही लिमिट में हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो अगर 1,000 से ऊपर कहीं होगा तो वो ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। और पैसा भेजने का सेफ मेथड क्या है उनकी, उसको भी जानकारी उनको देना है, जिससे कि वो इस जो बैंक का जो ऑथराइज्ड ऐप है उस पर इस्तेमाल करके अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करे।
3: जी
4: और इसमें बहुत सारा जानकारी भी है कि यूपीआई में फ्रॉड होने की संभावना आजकल देखे होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गलती से पैसा किसी और को चला जाता है, और कई बार फ्रॉड लिंक आते हैं, व्हाट्सएप पे लिंक आता है कि आपको हमने 5,000 रुपया का रिवार्ड दिया है और उस पर क्लिक करो तो आपको रिवार्ड मिल जाएगा। बच्चे एक्साइटेड होकर क्लिक कर देते हैं और तुरंत उनका मोबाइल हैक हो जाता है।
3: जी
4: तो किसी तरह का प्रलोभन में ना पड़े, कोई भी आजकल कहीं चीज से कोई फ्री मिलना नहीं है, तो इस चीज को जानकारी रखना है कि कोई फ्री पैसा कोई देने वाला नहीं है, कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई मकसद है आपसे चीटिंग करने की। तो कई बार अभी आ गया है कि ट्रेडिंग के लिए कि हम आपको टिप्स देंगे, ट्रेडिंग करिए और इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग क्या है, बिल्कुल एक अच्छे लर्निंग होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। कोई भी आदमी गारंटी नहीं दे सकता है, कोई जो है मार्केट के चीज़ है उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अगर गलती से कहीं कुछ हो भी गया तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी साइबर फ्रॉड के लिए जो एक सेंट्रलाइज नंबर है 1930, इस पर कॉल करें और उसको रोकने में बहुत कुछ मदद मिल सकता है।
3: जी, यानी सिर्फ बैंकिंग सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है, सिर्फ
4: जी
3: बैंकिंग
4: बिल्कुल
3: ही नहीं, है ना?
4: जी, बैंकिंग मतलब सेफ्टी सबसे पहले आता है, ताकि उस सुविधा का हम लगातार हम इस्तेमाल करते रहें, उससे डर नहीं।
3: अब चलते चलते हमारे अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बैंकिंग जो है सिर्फ बड़े और बूढ़ों की बात नहीं रह गई है, इससे डरना डराना नहीं है, बच्चों को भी अपने साथ शामिल करना है। बच्चे वही करेंगे जो हम से देखेंगे सीखेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। अगर हम अच्छे प्रैक्टिस करेंगे वही चीज़ बच्चे भी सीखेंगे, हम अगर सेविंग करेंगे बच्चे भी सेविंग करना सीखेंगे, हम अगर डिजिटल मोड को अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सेफ मोड में जा रहे हैं, बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। तो इसलिए बच्चों को भी अपने साथ बैंकिंग से डरवा करके न रखा जाए, और उनको सही चीज़ और सही चीज़ की जानकारी सही समय पर देने से हमारे समाज का और परिवार के वो बहुत अच्छे हिस्सेदार बनेंगे और कहीं ना कहीं देश हित में ये कार्य हो जाएगा।
3: जी सतीश जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी और इससे ज़रूर हमारे श्रोता, हमारी बहनें सब लाभ उठाएंगे। आपने अपना
4: बिल्कुल
3: कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, बच्चों को दे बैंकिंग की शिक्षा। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे सतीश कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रही थी आपकी रेडियो सखी राखी शर्मा। और राखी,
1: और बिल्कुल रानी, अब थोड़ा सा वक्त है कार्यक्रम में, तो चलते चलते बहनों को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी कुछ बताते चले।
2: हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी योजना है बहनों जो हर बेटी के उज्जवल भविष्य से जुड़ी है। ये योजना वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
1: इस योजना के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक अपने 10 वर्ष तक की बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं डाकघर या अधिकृत बैंक में।
2: हाँ, और इस खाते में आप सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस पर सरकार द्वारा आकर्षक ब्याज दिया जाता है और मिलने वाला ब्याज तथा मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री होती है।
1: बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है और 21 वर्ष पूरे होने पर पूरी राशि भी आप निकाल सकती हैं।
2: बिल्कुल, तो बहनों यदि आप अपनी बेटी के सपनों को पंख देना चाहती हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है।
1: हाँ, इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क भी कर सकती हैं बहनों, और हम तो यही कहेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी बचत जरूर करें अपनी बिटिया के नाम से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे एक बड़ी रकम तैयार हो गई, और सरकार भी इस क्षेत्र में आपके साथ तो है ही। और अब रानी देखो ना, बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि कब वक्त हो जाता है बहनों से विदा लेने का। अब घड़ी इशारा कर रही है कि लेनी होगी हमें विदा। चलते चलते बहनों को बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
2: और रानी को दे विदा। नमस्कार। गृह लक्ष्मी।
5: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं, और ये वक्त है कार्यक्रम आंचलिक लोकगीतों के कार्यक्रम भारत भारती का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं विंध्यवासिनी देवी और साथी।

आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:45 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं अब्राहम कुल्लू और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The all-party meeting convened by the government ahead of the monsoon session of the parliament has begun at Parliament Complex. The meeting has been chaired by Defence Minister Rajnath Singh, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, and Leader of the House in the Rajya Sabha JP Nadda are also present in the meeting. Soon after the meeting began, opposition parties initially walked out from the meeting. Talking to media, TMC MP Mohua Moitro said the entire opposition parties, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM, Trinamool Congress, and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting in protest. She alleged the National Citizens Party of India, NCPI, is attending the all-party meet, which is not a recognized parliamentary party. However, after registering the protest, opposition members including Congress MP Jairam Ramesh, CPIM leader John Britters, Mohua Maji of the JMM, and Trinamool Congress MP Mohua Moitro are now attending the meeting. With this meeting, the government seeks cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both the Houses of Parliament in the upcoming monsoon session of the Parliament beginning tomorrow. Several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage during the session, which will continue till the 13th of next month. In Jammu and Kashmir, at least four people, including three women, were killed and several went missing after heavy rains triggered landslides and flash floods in Poonch district early today. Akashvani Jammu correspondent reports that all the deaths were reported from the worst affected Suran Kote Tehsil, where authorities have deployed rescue teams and intensified relief operations to reach stranded residents, clear affected areas and provide immediate assistance to those impacted by the heavy rains. A 28-year-old woman was killed when her house collapsed in Nunabandi village of Poonch. Her husband and three children aged between 2 and 6 years were rescued with injuries and shifted to the hospital. In Lower Murra village, a landslide struck another house, leaving its owner and five other family members missing. Search and rescue operations were underway when the last reports came in. A minor girl drowned in a stream at Marhote village, while an identified body of a woman was fished out from a stream near Dhundak Lathung village in the district. Meanwhile, in Ladakh, a flash flood struck Sangraha village in Sanku subdivision of Kargil district on Saturday, leading to the closure of the Kargil-Jhanskar National Highway NH-301. According to initial reports, there has been no loss of human life. However, damage to private property and livestock has been reported. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia, and Romania today. On the first leg of her visit, the president will reach Moldova, where she will hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart, Maia Sandu. President Murmu will also meet the president of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and interact with the members of the Indian community. This is a first-ever visit by Indian president to Moldova. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met President of Zanzibar of United Republic of Tanzania and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali M. Winnie, in New Delhi this morning. In a social media post, Dr. Jaishankar said, during the meeting they discussed expanding India-Tanzania cooperation in higher education, capacity building, water supply, health, artificial intelligence, digital and other priority sectors. He noted that the IIT Madras Zanzibar campus stands as a shining example of India's close partnership and enduring commitment to Africa's education and development priorities. Zanzibar is an autonomous region of Tanzania. It has its own constitution, president, house of representatives and flag. Dr. Hussein Ali Al M. Winwi, who is on a four-day official visit to India, will meet Vice President C.P. Radhakrishnan in the national capital today. The stage is set for a blockbuster FIFA World Cup final as defending champions Argentina will lock horns with European powerhouse Spain at the New York New Jersey Stadium tonight. Both the teams have produced impressive performances throughout the tournament and will now battle for the football's biggest prize. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी। विपक्षी दलों के नेताओं ने वॉकआउट कर टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाने का जताया विरोध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट जमा करने का दिया निर्देश। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने नई उत्पाद नीति की सराहना की। कहा, यह राज्य और व्यापारियों के हित में है, लक्ष्य से अधिक राजस्व की होगी प्राप्ति। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहली बार संथाली भाषा की फिल्म आंगेन को मिला नेशनल अवार्ड। जमशेदपुर के रविराज मुर्मू बने देश के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। और राजधानी रांची में 26 जुलाई से दिखेगा फुटबॉल का रोमांच। खेल प्रेमियों को स्टेडियम में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए दर्शकों को दिया जाएगा टिकट। और अब समाचार विस्तार से। मॉनसून सत्र से पहले आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि 15 मिनट बाद विपक्षी सांसद बाहर आ गए और बैठक का वॉकआउट किया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि विपक्षी सांसद दोबारा मीटिंग में शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। परीक्षा एजेंसी ने फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट जमा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। राज्य के उत्पाद एवं पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा है कि नई उत्पाद नीति राज्य हित और व्यापारी हित में है। इससे राज्य का खजाना भर रहा है, इसलिए इसकी समीक्षा की जरूरत अभी नहीं है। गिरिडीह परिसदन में कल उन्होंने कहा कि एक्सपायरी बियर बेचने मामले में दोषियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब आने के बाद कार्रवाई होगी।
3: जो उत्पाद नीति हमने बनाया 2025, बेहतर से बेहतर रूप से उस नीति का धरातल पर कार्य दिख रहा है। राजस्व का भी जितना नुकसान हुआ था पूर्व में, जितना टारगेट है वो राजस्व भी अचीव हो रहा है और टारगेट से हम ऊपर जा रहे हैं। तो हमने देखा होगा कि 25-26 में 2700 करोड़ का टारगेट लक्ष्य था सरकार का, 2710 करोड़ हम लोग ले, इस बार 4600 करोड़ का लक्ष्य। हम समझते हैं 5000 करोड़ उसको पूरा करेंगे।
2: इस दौरान मंत्री श्री महतो ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी फाइल लंबित नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा कि उलीहातू गांव को आदर्श जनजातीय मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वे कल खूंटी में उपायुक्त और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने उलीहातू में समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ बिरसा ओड़ा का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली में आयोजित 72वें फिल्म पुरस्कार समारोह में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में पहली बार संताली भाषा की शॉर्ट फिक्शन फिल्म आंगन के लिए झारखंड के रविराज मुर्मू को बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर का सम्मान मिला है। इस उपलब्धि से न केवल संताली सिनेमा बल्कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 13 मिनट की इस फिल्म में ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय जीवन शैली को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एनटीपीसी और पीयूवीएनएल ने संयुक्त रूप से रांची में द्वितीय ऐश यूजर मीट 2026 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य अपशिष्ट से समृद्धि तक परिवर्तन की सशक्त एवं सतत यात्रा के बारे में लोगों को अवगत कराना था। मौके पर वन पर्यावरण विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने फ्लाई ऐश के सदुपयोग की जानकारी दी।
4: तो हमारे राज्य में एसिडिटी सॉइल का बड़ा इश्यू है, उसमें फ्लाई ऐश मिक्स करके ऑर्गेनिक मैनर के साथ करके इसका पोटेंशियल यूज हो सकता है ताकि लैंड का रिक्लेमेशन करने का। इसी तरह हमारा जो माइनिंग एरिया में लैंड रिक्लेमेशन के लिए यूज हो सकता है। हमारे राज्य में अभी एक डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, तो सबमें भी ब्रिक्स का यूज हो सकता है।
2: वहीं पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके सहगल ने कहा कि ऐश को अब एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो सतत अवसंरचना विकास एवं आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। एनएचएआई रांची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सड़क बनाने के कार्यों में किया जा रहा है, इससे मिट्टी की बचत हो रही है।
5: अभी हम लोग फ्लाई ऐश को अपने एम्बेंकमेंट में यूज कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी बन रहा है, तो उसके अप्रोच में जब आड़ीवाल हम लोग बनाते हैं, आड़ीवाल के बीच में जो फिलिंग मटेरियल होता है उसके रूप में हम लोग फ्लाई ऐश का यूज कर रहे हैं। और वहाँ पर पहले क्या होता था, मिट्टी से हम लोग भरते थे उसको, और इससे हमारी मिट्टी की बचत हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इस वेस्ट मटेरियल का यूज करके पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं।
2: पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सिलारी गांव में कल देर शाम ट्रांसफर का विद्युत फॉल्ट ठीक कर रहे बिजली मिस्त्री सत्येंद्र महतो की हाईटेंशन तार में सटने से मौत हो गई। जूनियर इंजीनियर ने विभागीय प्रावधान के तहत 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। इधर सहायक अभियंता विकास कुमार ने आज जानकारी दी कि शटडाउन लेने के बाद भी बिजली मिस्त्री को करंट कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है, नौकरी देने के मामले में जेई से बात कर निर्णय लिया जाएगा। जमशेदपुर में सुशील डे नामक युवक के कथित अपहरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
6: जमशेदपुर कोर्ट है, वहाँ के पास से एक व्यक्ति जिसका नाम है सुशील डे, उसे कुछ लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। सभी जो आगे वाले रूट थे या जो भी संभावित रूट थे उन सबको सक्रिय सचेत किया गया है, और इस चीज में जितने भी लोगों की संलिप्तता थी उनमें से 2 लोग हमारी गिरफ्त में है और कुछ लोग हैं जिनको अभी कार्रवाई करना है।
2: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में 135वें डूरंड कप प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ग्रुप सी के मुकाबले होंगे। पहले दिन 26 जुलाई को जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी के बीच मैच होगा। गौरतलब है कि खेल प्रेमियों के लिए यह मैच निशुल्क होगा, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था उत्पन्न ना हो इसके लिए दर्शकों को टिकट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे दिखाने पर ही स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी, विपक्षी दलों के नेताओं ने वॉकआउट कर टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाने का जताया विरोध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट जमा करने का दिया निर्देश। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने नई उत्पाद नीति की सराहना की, कहा राज्य और व्यापारियों के हित में है, लक्ष्य से अधिक राजस्व की होगी प्राप्ति। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहली बार संताली भाषा की फिल्म आंगिन को मिला नेशनल अवार्ड। जमशेदपुर के रविवाज मुर्मू बने देश के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। और राजधानी रांची में 26 जुलाई से दिखेगा फुटबॉल का रोमांच, खेल प्रेमियों को स्टेडियम में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश, भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए दर्शकों को दिया जाएगा टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो चुके हैं और ये वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। अनुरंजनी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बंदिश। कलाकार हैं डॉक्टर अनीता सेन।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं बयाम सईदी की लिखी गजल। फनकार हैं जगजीत सिंह।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुगम संगीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सूरज सनीम की लिखी गजल। फनकार हैं तलत अजीज़।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने को है। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: नहीं अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों

0: में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल, स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना होगी। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। वक्त हो चला है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है राजी।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं इरशाद कामिल का लिखा गीत उस्ताद राशिद खान की आवाज में। इस गीत को संगीत दिया है संदेश शांडिले ने और फिल्म का नाम है जब वी मेट।

हम आपके हैं कौन, ये है फिल्म का नाम। और आइए इस फिल्म से सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम को। गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

परिणीता ये फिल्म का नाम और आइए सुनते हैं इस फिल्म से सोनू निगम को। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है शांतनु मोइत्रा ने।

0: सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को है, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया है। लेख में बताया गया है कि नवाचार और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से पारंपरिक भारतीय शिल्प कला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकारों को बाजार उपलब्ध कराने, सतत आजीविका सृजित करने और भारतीय विरासत को संरक्षित करने में मदद कर रही है। नवीन चिंतन समूह ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी कंपनियों से बातचीत शुरू की है। समूह फ्रांस और अमेरिका की कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। समूह की योजना झारखंड समेत 9 से अधिक राज्यों में करीब 18 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने की है, जिस पर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने रांची में अपशिष्ट से समृद्धि तक विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सम्मेलन में फ्लाई ऐश और उससे जुड़े उप उत्पादों के नवाचारपूर्ण तथा सतत उपयोग पर नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में धनबाद रेल मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ADRM मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक रैक लोड हुए हैं।
1: देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, फिट रहने का संदेश।

0: जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी की रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से जुड़ी प्रणाली के उपचार पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इनसे जुड़ी बीमारियों के अत्याधुनिक उपचार पर चर्चा की। नई दिल्ली के न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष तोमर ने आधुनिक तकनीकों और उपकरणों की जानकारी दी। अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से चिकित्सा ज्ञान के आदान और उन्नत न्यूरो सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक रवि राज मुर्मू को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि रवि राज मुर्मू के साथ साथ झारखंड और संथाली भाषा के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि फिल्म में संथाली भाषा, संस्कृति और कहानियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सफलता झारखंड के युवा फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को प्रेरित करेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। इधर खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से दो गांवों के बीच बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया के ध्वस्त होने से दर्जनों गांवों का सोयकों से सीधा संपर्क टूट गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल के 82वें संस्करण में देश भर के 15,000 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्री आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिलिंग कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, फिट रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े हैं।
0: केंद्रीय मंत्री और कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि झारखंड और पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। मंत्री ने विश्वास जताया कि सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम नई सफलताएं हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सलीमा की उपलब्धि देश की बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:01 हो रहे हैं। थोड़ी देर में हम सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आइए सुनते हैं दीपाली साठी के स्वर में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का एक गीत. इस गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने और धुन बनाई है जीत गांगुली ने.

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के लिए।

0: मुकदमा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवंत भी, विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा। इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा के गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। उनसे बात करते हैं।
3: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद
3: सर। आप नुआपड़ा जिले की सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
4: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर जैसा लगा, इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकान छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे, जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है, किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारन बा नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ सामीप्य है, संपर्क है, उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के पर मेरा रुझान बढ़ गया
3: जी सर।
4: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
3: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारी, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओडिशा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
4: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं, एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक ओडिशा का उपकल जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का आहा जंगल है और पहाड़ पर्वत है जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा से उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ स्टूडेंट लोगों के साथ और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुत प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
3: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है, एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके अपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वो कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
4: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहड़ को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5 दिन 7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गांव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गांव को जाओगे उसी गांव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टॉर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के, अकेला जाकर उसी गांव में 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था। सब नारी पुरुष सब मिलके ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मैं रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
3: अब वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।

0: पर्दावन है, इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है, ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का, वो मंत्र ऐसे गाते थे कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नए संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और स्मृति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है, वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था, उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है, और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो, बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत, और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं, और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है, और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुँचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन एकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर एकेडमी करता है, और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए। बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं, वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। रही। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:25 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: Cena.
1: आकाशवाणी रांची पर अब वक्त हो चला है उस रोमानी सफर का जिसे हम रांची मेलोडीज के नाम से जानते हैं, और आज की मेलोडीज दोनों को आप सुनेंगे अपनी दोस्त शिल्पी के साथ। आज की मेलोडीज भीगी बारिश के नाम।

La दिल बारिश में भी खिड़की के पास बैठकर बस एक गरम चाय और पुरान मालूम पड़ता है, मानो दिल के में नहीं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि बूंद बूंद से लिखी जाती है बारिश, बारिश की दाद।

Bilgi basijo.

रिमझिम सी बारिश में छुपा है एक राज पुराना, जो कह भी नहीं सकते और भूल भी नहीं पाते। तभी तो कहीं बारिश दर्द को छुपा लेती है और कहीं दर्द बारिश बन जाता है। तो दोस्तों, जब भी बारिश हो, जरा रुक के उसे महसूस करना। न जाने ये बारिश किस किस पल की यादें लेकर आए, और शायद नया पल भी लिख दे ये बारिश।

तो आज की बारिश की बूंदों को यहीं समेट लेते हैं। रांची मेलोडीज के सफर पर फिर कभी मुलाकात होगी। तब तक बारिश में भीगते रहें, ख्यालों में जीते रहें और अपनी दोस्त शिल्पी को अब दीजिए इजाजत।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया है। लेख में बताया गया है कि नवाचार और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से पारंपरिक भारतीय शिल्प कला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। नवीन जिंदल समूह ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी कंपनियों से बातचीत शुरू की है। समूह की योजना झारखंड समेत 9 से अधिक राज्यों में करीब 18 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने की है, जिस पर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक रवि राज मुर्मू को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि रवि राज मुर्मू के साथ साथ झारखंड और संथाली भाषा के लिए भी गर्व की बात है। जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी की रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से जुड़ी प्रणाली के उपचार पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इनसे जुड़ी बीमारियों के अत्याधुनिक उपचार पर चर्चा की। नई दिल्ली में न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष तोमर ने आधुनिक तकनीकी और उपकरणों की जानकारी दी। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। इधर खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से 2 गांवों के बीच बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया के ध्वस्त होने से दर्जनों गांवों का सोएको से सीधा संपर्क टूट गया है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि झारखंड और पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:03 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं बाल श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा।

0: जय हिंद बच्चों।
1: कैसे हैं बच्चों? आजकल मौसम तो बड़ा सुहावना हो चुका है।
0: कैसे हैं बच्चों?
1: कभी रिमझिम रिमझिम बारिश तो कभी चमकती धूप, कभी हवा की ठंडी ठंडी झोंके तो कभी रूई से सफेद बादलों के बीच झांकता छुपता सूरज। ऐसे में मौसम का आनंद लेने के साथ साथ खेलने कूदने में भी आपको खूब मजा आ रहा होगा, है ना बच्चों?
0: लेकिन बच्चों, कभी आपने ध्यान दिया है कि इस बदलते मौसम में हम सबसे अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी लापरवाही हो ही जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इस बदलते मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बीमारी हम सबके पास फटक भी ना पाए।
1: सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखिए बच्चों कि आपको पानी से खूब अच्छे से दोस्ती रखना है, क्योंकि पानी हर मौसम में लाभदायक होता है। इसलिए बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत रखिए। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिए कि फ्रिज का ठंडा पानी नहीं बल्कि नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए।
0: अब टिप्स नंबर 2, जंक फूड और फास्ट फूड को बोलिए बाय बाय और मम्मी के हाथ से बनाए भोजन को बोलिए हाँ हाँ।
1: हाँ बच्चों, मम्मी के हाथों बनाए

0: सारे भोजन ही ज्यादा खाना चाहिए। जंक फूड और फास्ट फूड स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की जगह रोग लेकर आते हैं और आपके शरीर को दे देते हैं।
1: इसलिए बच्चों, जब भी भूख लगे तो मम्मी के हाथ का खाना खाइए। आप चाहे तो उनसे ताजी सब्जियों के सूप और चटपटी सब्जी, अन मनपसंद भोजन आग्रह करके बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा भैया आपने, क्योंकि मम्मी के हाथों प्यार से बनाए भोजन आप खाते हैं तो बीमारियां डर के मारे आपके आसपास भी नहीं आने वाली। क्योंकि दुम दबा के छिपी रहती हैं अपने ही घेरे के अंदर।
1: अब बच्चों, टिप्स नंबर 3 की बात कर ली जाए तो टिप्स नंबर 3 ये है कि इस मौसम में नमी की वजह से वातावरण में मच्छर तथा अन्य कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाते हैं और ये हम इंसानों को काट लेते हैं, तो हम बीमार भी कभी कभी पड़ जाते हैं ना। इसलिए हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारे आसपास ये तमाम तरह के जीव ना पनपें।
0: इसके लिए हम सबसे पहले तो अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, साथ ही सफाई का भी खूब ध्यान रखें। मम्मी पापा और परिवार के अन्य सदस्यों के संग मिलकर साप्ताहिक साफ सफाई जरूर करें।
1: साथ ही हमेशा पूरा तन ढकने वाले वस्त्र पहनें, जिससे मच्छर या अन्य कीड़ों को काटने के लिए आपके शरीर में जगह ही न मिल पाए।
0: कभी भी बासी या मक्खियों से भिनभिनाती खाने की चीजों को बिल्कुल मत खाइए और बाजार की चीजों को दूर से बोलिए ना ना, क्योंकि अक्सर खुले और मक्खियों के बैठे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं बाजार में, इसको खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं।
1: और अब सबसे अंतिम और जरूरी टिप्स, उसको भी ध्यान से जान लेते हैं बच्चों। जब भी आप बाहर से खेल कर आए तो साबुन से अच्छी तरह से हाथ जरूर धोएं। और हाँ बच्चों, खाना खाने के पहले भी धोना है ना?
0: हाँ बच्चों, बाहर से आने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने से कीटाणु खत्म हो जाते हैं और हाथ स्वच्छ और साफ सुथरा हो जाता है। तब उस हाथ से खाना खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी खेल कर आइए या कुछ खाने वाले हों आप, तो साबुन से दोनों हाथों को खूब अच्छे से धोइए।
1: यदि थोड़ी सी तबीयत खराब भी लग जाए बच्चों, तो तुरंत मम्मी पापा को बताएं ताकि वे लोग आपके स्वास्थ्य को सही करने के उपाय कर पाएं और आप फिर से जल्दी से ठीक होकर मौसम का आनंद दोस्तों के संग खेल कर ले पाएं। तो बच्चों, अपने सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने की बात तो हम सब ने जान ली है ना बच्चों, लेकिन ये सेहत हमेशा ठीक रहे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं?
0: चलिए भैया, हम बताते हैं बच्चों को। बच्चे आपका इशारा समझ चुके हैं भैया कि आप उनसे धरती माता की सेहत ठीक रखने की बात कह रहे हैं, सही कहा ना बच्चों?
1: हाँ बच्चों, सभी प्राणियों का स्वास्थ्य सही रहे, बीमारियां हमसे कोसों दूर रहे, इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी धरती माता के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना होगा है ना, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना होगा, और पेड़ पौधे लगाने से ही हमारी धरती माता स्वस्थ होंगी, यानी धरती माता को हरा भरा बना करके हम लोगों को रखना है।
0: पेड़ पौधे धरती माँ को सुंदर तो बनाते ही हैं, साथ ही हम प्राणियों के सच्चे दोस्त भी होते हैं, इसीलिए तो
1: हरे भरे झूमते ये पेड़ बोलो बोलो हमसे क्या कहते हैं, चुन्नू बोलो मुन्नू बोलो कोने में बैठी छोटी सी गुड़िया तुम भी मन की खोलो।
0: आओ तुम्हें हम बताते पेड़ों की होती यही पुकार, काटो ना वे वजह हमें कर लो हमसे प्यार, खाली भूमि पर और लगाकर पौधों से कर दो धरती माँ का श्रृंगार, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हम देते, स्वादिष्ट फलों से पेट तुम्हारा भरते, राह में गर्मी जब तुम्हें सताती ठंडे छाओ दे हम तुमको सहलाते।
1: बाढ़ गर्मी जलवायु की नादानी हमने उन सब से तुम्हें बचाने की है ठानी, लगा दो अब भी अपने आस पास हमें तभी धरती माँ मुस्कुराएगी और सभी प्राणियों की जिंदगी भी खिलखिलाएगी।
0: कविता सुनकर तो हमारे नन्हे दोस्त भी समझ चुके हैं कि पौधे हमारे लिए कितने लाभकारी होते हैं भैया।
1: हाँ दीदी, पेड़ हमें तरह तरह के फल खाने को देते हैं। गर्मियों में जब चिलचिलाती धूप से हम परेशान हो जाते हैं, तो ये पेड़ ही तो हैं जो हमें ठंडी छांव देते हैं।
0: और सबसे जरूरी तत्व ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए प्राण वायु भी तो ये पेड़ ही हमें देते हैं ना भैया, वो भी बिल्कुल फ्री में।
1: पर सबसे परेशान करने वाली बात तो ये है बच्चों कि हम अपने लाभ के लिए लगातार पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। अब तो वन भी बहुत कम बचे हैं।
0: इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है बच्चों कि हमारी धरती में अब बीमार होने लगी है और इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने लगा है।
1: हाँ बच्चों, और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगर अब भी हम सभी लोग नहीं जागरूक हुए और पेड़ों की कटाई नहीं रोके तथा पेड़ और अधिक मात्रा में नहीं लगाए, तो आने वाले समय में बहुत ही परेशानियां बढ़ जाएंगी।
0: तब कभी तो हद से ज्यादा बारिश होकर बाढ़ आने लगेगा, तो कभी बारिश एकदम न होकर सूखा पड़ने लगेगा, जो धरती के भीतर का पानी खत्म करने लगेगा बच्चों, जिससे इंसानों को पीने के लिए पानी मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा।
1: इन तमाम समस्याओं से बचने का सबसे आसान तरीका जानते हैं बच्चों, क्या है? आप लोगों की मुस्कुराहट बता रही है कि आप जान चुके हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए कहने वाले हैं हम, है ना?
0: हाँ बच्चों, सभी लोग बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, जहाँ भी जगह मिले, अपने घर के बगीचे में, अगल बगल पड़ी मिट्टी वाली खाली जमीनों में, गमलों में, और मम्मी पापा भाई बहन सभी से कहकर पेड़ लगाने के लिए उन्हें भी जागरूक करिए।
1: हाँ बच्चों, साथ ही जब भी किसी दोस्त के बर्थडे में जाएं, तो अन्य गिफ्ट के साथ साथ एक पौधा उसे जरूर दें। और जब आपका बर्थडे आए, तो रिटर्न गिफ्ट में अन्य चीजों के संग पौधे या पौधे का बीज अपने साथियों को देना ना भूलें, क्योंकि एक पेड़ एक जिंदगी है। तो आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि
0: पेड़ हम लगाएंगे, धरती पर हरियाली लाएंगे,
1: करके वातावरण हरा भरा, भविष्य अपना सुंदर बनाएंगे। तो दीदी, बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन अब हमें बच्चों का मनोरंजन भी करवाना चाहिए। तो चलिए बच्चों को सुनाते हैं ये बाल गीत।
2: आओ बच्चों, खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी, एक दो। रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले

पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुत्तल डिंडिगल डिंडिगल कुत्तल, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल नर्दिगोल नर्दिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोटनूर कोटनूर शोटनूर कोटनूर,

0: बालगीत तो भैया आपने बहुत ही अच्छा सुनवाया। बच्चों आपको पसंद आया ना?
1: हाँ दीदी, बच्चों को ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा और अब बच्चे भी तैयार हैं कुछ सुनाने के लिए। तो चलिए बच्चों से भी सुनते हैं।
2: क्या नाम है आपका?
3: लक्ष्मी।
2: किस क्लास में पढ़ती है बेटा?
3: दूसरा।
2: और स्कूल का नाम क्या है?
3: निदाम कोठा चोली।
2: क्या सुनाओगी?
3: ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता, सोते सोते भूख

0: मामा हो गए गंजा। वाह बहुत सुंदर कविता। क्या नाम है आपका?
1: दीपिका कुमारी।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा?
1: पहला क्लास।
0: कविता याद है? सुनाएंगी? सुनाइए।
1: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। दाना खिलाओगे तो खा जाएगी।
0: अरे वाह, दाना खिलाओगे तो खा जाएगी। वाह, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए। पानी बचाना चाहिए ना? पानी बचाने से क्या होगा?
1: मछली नहीं मरेगी।
0: मछली नहीं मरेगी और फिर हम लोगों को पानी मिलेगा भी, है ना? क्या नाम है?
1: प्रवीण खड़िया।
0: किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? अच्छा,
1: लुदाम कोठा टोली टू।
0: और किस क्लास में? क्लास 2 में।
1: जी।
0: क्या सुनाओगे?
1: जोनी जोनी इस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग नाइन नो पापा, ओपन माउथ हा हा हा।
0: हा। क्या नाम है बेटा?
2: शर्मिला कुमारी।
0: किस स्कूल में पढ़ती हो?
2: लीदाम को ठाटोली।
0: किस क्लास में?
2: दूसरा क्लास।
0: कविता याद है?
2: जी।
0: चलो सुनाओ।
2: दो चूहे थे, छोटे छोटे थे, तो खेल रहे थे। बिल्ली ने देखा, बोली मैं भी आऊंगी। ना बाबा ना, हमारा पेट कटोगे, पूंछ कटोगे। हम तो नहीं आएंगे, हम भाग जाएंगे।
0: वाह, हम भाग जाएंगे। वाह, चूहा बहुत तेज है नहीं? वाह बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। क्या नाम है
1: सावन खड़िया।
0: स्कूल का नाम?
1: रोदाम को ठटोली।
0: किस क्लास में हो?
1: टू।
0: क्लास 2 में। क्या सुनाओगे?
1: चार छोटे चिड़िया खाती थी अनार, एक उड़ी चली गई, बाकी बचा तीन। चिड़िया चिड़िया खाती थी अनार, एक उड़ी चली गई, बाकी बचा दो। चिड़िया चिड़िया उड़ी उड़ती जा, एक उड़ी चली गई, बाकी एक बचा। चिड़िया चिड़िया खाती थी अनार, एक उड़ी चली गया, बाकी बचा जीरो।
0: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। क्या नाम है?
3: शिवानी कुमारी।
0: किस क्लास में पढ़ती हो बेटा?
3: टू।
0: क्या सुनाओगी?
3: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, जी खुशी से गाती जा। नाव चली भाई नाव चली, कागज की मेरी नाव चली।
0: वाह, कागज की मेरी नाव चली।
4: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई भैया।
5: तो दीदी, अब जानकारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं और बच्चों को अब हम बताने वाले हैं कि पुस्तकें जो होती हैं बच्चों, वो हमारी सच्ची मित्र होती है।
4: बच्चों, एक पहेली आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए, वह कौन सा हमारा सच्चा साथी है जिसके पास होते हैं हमारे हर सवालों के जवाब, रखता है बहुत सी जानकारी अपने पास और निभाता है साथ हमारा हमेशा।
5: बताइए बच्चों, क्या है? पुस्तकें। बिल्कुल सही कहा आपने और सही पहचाना कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी और सच्ची मित्र होती है। जानते हैं बच्चों, पुस्तकों में ज्ञान का भंडार होता है। सोचिए, यदि पुस्तकें ना होती तो हमारा ज्ञान कितना अधूरा रहता, है ना? क्योंकि पुस्तकें यानी किताबों से पढ़कर ही तो हम सब कुछ जानते हैं, सीखते हैं, है ना?
4: लेकिन भैया, मैंने कुछ ऐसे भी बच्चों को देखा है जो ये सोचते हैं कि किताबें सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए होती है, उन्हें परीक्षा में पास होने के लिए ही पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। किताबें तो समझिए जादू का पिटारा होती है। जानते हैं कैसे?
5: वो ऐसे बच्चों कि यदि आप कहानियों की किताबें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कहानी हमारे आपके सामने बीत रही हो। मोगली के साथ आप भी जंगल को महसूस करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ घूमने भी लगते हैं, है ना?
4: इसी तरह राजा रानी की कहानी में महल में या परियों की कहानी में चांद सितारों के साथ आसमान की सैर करने लगते हैं आप।
5: अगर कभी आपका दोस्त खेलने नहीं आता और आप बैठे बैठे बोर हो रहे हों, तब भी ये पुस्तकें आपका साथ निभा सकती हैं। ऐसे समय में आप अपनी पसंद की कोई भी किताब उठाइए और पढ़ने बैठ जाइए। देखिएगा कैसे बोरियत छू मंतर हो जाती है और आप खो जाते हैं पुस्तकों की दुनिया में।
4: जानते हैं बच्चों, अच्छी और जानकारी पूर्ण पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, नई बातों की जानकारी भी मिलती है और भाषा भी सुधरता है। जैसे यदि हिंदी या अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं तो उस भाषा की आपकी पकड़ मजबूत होती है।
5: इतना ही नहीं बच्चों, तरह तरह के पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान भी बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लगता है।
4: हाँ बच्चों, जैसे आप कहानी की किताब पढ़ते हैं तो सोचने और कुछ नया करने की आपकी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि कहानी पढ़ते वक्त हम सभी के दिमाग में एक फिल्म की तरह चित्र बनता जाता है जो हम सभी की रचनात्मकता को बढ़ाता है।
5: जैसे कि पंचतंत्र, अकबर बीरबल जैसी कहानियाँ यदि आप पढ़ना पसंद करते हैं तो उससे मुसीबत के समय विवेक से काम कैसे लेना चाहिए और सच का हमेशा साथ देना चाहिए, ये सीखने समझने को आपको मिलता है।
4: किताबों के पढ़ने और अच्छी सच्ची मित्रता रखने के विषय में ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि अच्छी किताबें पढ़ना और उन्हें अपने पास रखना जीवन को समृद्ध बनाता है।
5: और बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि कलाम साहब को पुस्तकों से इतना ज्यादा प्रेम था कि वे अपने जीवन में उपहार के रूप में सिर्फ पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे, और जब वे राष्ट्रपति भवन से विदा हुए थे तब भी उनके अपने सामानों में कपड़ों के अलावा और साथ में सिर्फ हजारों पुस्तकें थी जो उन्हें बहुत प्रिय थी।
4: तो बच्चों, इस तरह से हम सभी को भी पुस्तकों से प्रेम करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें होती हैं हमारी सच्ची मित्र जो खूब निभाती है साथ हमारा।
5: तो बच्चों, कैसी लगी जानकारी? पुस्तकें आपकी सच्ची दोस्त हो सकती हैं, तो हमेशा पुस्तकों के पास रहें और पुस्तकों को अपने पास रखें। और अब बच्चों, कुछ और मनोरंजन भी होना चाहिए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं एक बाल कथा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? और अब बारी है, हम हर हफ्ते आपको किसी प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं, तो आज भी हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, और वो प्रेरक व्यक्तित्व हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बच्चों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान शिक्षक थे और उनकी माता पार्वती बाई तिलक धार्मिक और संस्कारी महिला थी, और बचपन से ही तिलक जी अत्यंत मेघावी, अनुशासित और निडर थे। बच्चों, उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। यदि उनके सामने किसी के साथ गलत होता तो वे उसका विरोध करने से कभी नहीं डरते थे।
4: उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी में प्राप्त की। बाद में उनका परिवार पुणे चला गया जहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने गणित विषय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद कानून की शिक्षा भी ली। वे चाहते तो आरामदायक नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
5: बच्चों, तिलक जी का विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सबसे बड़ा जो आधार है वो है शिक्षा। इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी की। उनका उद्देश्य था बच्चों कि भारत के युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जिससे उनमें आत्मसम्मान, देशभक्ति और नेतृत्व की भावना विकसित हो।
4: बच्चों, लोकमान्य तिलक केवल शिक्षक नहीं बल्कि एक निर्भीक पत्रकार भी थे। उन्होंने केसरी नामक मराठी समाचार पत्र और मराठा नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से वे अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना करते थे और भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते थे। उनके लेख इतने प्रभावशाली होते थे कि अंग्रेज सरकार उनसे डरने लगी।
5: बच्चों, तिलक जी ने यह महसूस किया कि यदि देश को आजाद कराना चाहते हैं तो लोगों को एकजुट करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती उत्सव की शुरुआत की। पहले ये त्योहार केवल घरों तक सीमित रहते थे, लेकिन तिलक जी ने इन्हें सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की ताकि सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठा हो और देश की समस्याओं पर विचार करें और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ें।
4: लोकमान्य तिलक का सबसे प्रसिद्ध नारा जानते हैं बच्चों क्या था? उनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस एक वाक्य ने पूरे देश में स्वतंत्रता की नई चेतना पैदा कर दी बच्चों। आज भी यह नारा भारत के इतिहास के सबसे प्रेरणादायक नारों में गिना जाता है।
5: बच्चों, तिलक जी ने अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध किया और इसके कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। वर्ष 1908 में उन्हें वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा दी गई। जेल में रहते हुए उन्होंने हार नहीं मानी बच्चों, वही उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का सरल और प्रेरणादायक अर्थ समझाया तथा कर्मयोग का संदेश दिया कि मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए।
4: लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे चाहते थे कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता मिले। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया। उनके विचारों ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।
5: बच्चों, 1 अगस्त 1920 को इस महान देशभक्त का निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर तोड़ गई। लाखों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज भी भारत उन्हें लोकमान्य अर्थात जनता द्वारा सम्मानित नेता के रूप में याद करता है। बच्चों, उनके जीवन से हम कई तरह की प्रेरणाएं ले सकते हैं, जैसे कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, अन्याय का हमेशा साहसपूर्वक विरोध करना चाहिए।
4: अपने देश से प्रेम करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। एकता, अनुशासन और परिश्रम से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
5: हाँ बच्चों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक महान शिक्षक, पत्रकार, समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है बच्चों कि यदि हमारे मन में देश प्रेम, सत्य, साहस और दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।
4: आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सभी ईमानदार, अनुशासित, परिश्रमी और देशभक्त नागरिक बनने का संकल्प लें।
5: तो बच्चों, ये थे आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो हमें बच्चों से विदा लेनी होगी। तो बच्चों, चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी
4: गौरव कुमार पांडे की थी।
5: तो बच्चों, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
6: जय हिंद बच्चों।
7: कार्यक्रम बाल सभा अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की कड़ी में 4:30 हो रहे हैं। ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक का। शाम 6 बजे एक बार आप पुनः सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार खेती बाड़ी। इस कार्यक्रम का वक्त होगा 6:02 का। सुनिए हमारी दुनिया 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे।

हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल का वक्त होगा 7:15 का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पुष्पा सहाय की कुछ कविताएं और दिलीप तेतरवे की कहानी। प्रस्तुति होगी प्रणव कुमार की। संथाली समाचार पत्रिका का वक्त होगा 7:45 का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा सुनिए 8:00।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनिए 8:15 से जानिए क्या है सुर्खियों में 8:30 पर 8:45 से आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से न्यूज एट 9 बजे और उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे 9:15 से।

रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के अंतर्गत मदुरई के टॉप श्रेणी के कलाकार विदुषी श्रीमती बालमणि ईश्वर का कर्नाटक गायन आप सुनेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए रात्रि 11 बजे से।

दोस्तों, क्या है खूबसूरती जो आँखों को अच्छी लगती है, जो कानों को अच्छा लगता है सुनने में, जो दृश्य देखने के कुछ समय बाद तक भी साथ रहता है और सुनने के कई घंटों बाद भी सुनाई देता रहता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये बात तो ज़रूर सुनी होगी आपने। कोई भी चीज़ जो खूबसूरत है वो हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। आप उसे छोड़ भी दें तो वो आपको नहीं छोड़ने वाली। यूं ही शाम ढलने का वक्त आया, कोई आंखों में बेहद खूबसूरत नजर आया। आया था साथ लेके मोहब्बत की आफतें, जाएगा जान लेके जमाना शबाब का।

चमन तुमसे इबारत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, और तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता।

आसमां को पसंद है चांद, नींद को तेरे सपने, होठों को तेरी बात, हमें आपका साथ और आपको।

दिल से ख्याले यार को टाले हुए तो हैं, हम जान देकर दिल को संभाले हुए तो हैं। आप किसी अपने के साथ रहते हैं, वो लम्हा बिल्कुल स्पेशल हो जाता है। उसके द्वारा दी हुई साधारण सी चीज़ भी कितनी ख़ास हो जाती है। वो पुकारे तो आप वक्त नहीं देखते, सिर्फ इतना समझते हैं कि आपको पुकारा गया है। प्यार पर न जाने कितना कुछ कहा गया, लिखा गया, पूरा का पूरा बदल जाता हूँ। तुमसे मिलकर मैं नहीं, तुम हो जाता हूँ। ढूंढती है दुनिया मुझे यहाँ वहाँ, जाने कहाँ कहाँ। मैं तो अक्सर भीड़ में ही, तुम में ही गुम हो जाता हूँ।

0: for more entertainment.
1: दोस्तों, मौसम बेहद खूबसूरत है बाहर। प्रकृति की मनमोहक छटा बाहर बिखरी हुई है। मन भी मानो बिल्कुल हरा हुआ जाता है। जैसे सिर्फ और सिर्फ प्रकृति शाश्वत है, वैसे ही कुछ लोग हुआ करते हैं जो जाकर भी कभी नहीं जाते, अपनी कला के जरिए, शब्दों के जरिए भीतर तक हम में रह जाते हैं। चलेंगे थोड़ा पीछे, 1971 का साल, भारत पाकिस्तान युद्ध का साल, भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के ऊपर विजय का साल, राजेश खन्ना सही मायनों में एक सुपरस्टार का साल, और हिंदी फिल्म संगीत में ढेर सारे चार्ट बस्टर्स का साल, और गीतकारों के लिए रचनात्मक प्रयोग का साल। द वर्ड स्मिथ यानी गोपाल दास नीरज, जो आज के दिन यानी 19 जुलाई को हमें छोड़े गए थे। दोस्तों, 1971 में उन्होंने 3 फिल्मों के लिए गीत लिखे, तेरे मेरे सपने, गैम्बलर और शर्मीली। और कौन लिख सकता है, ओ नीरज नैना सुन जरा।

और दोस्तों, फिल्म संगीत के चाहने वाले ये गाना कभी भूल सकते हैं क्या? इस गाने में जिंदगी का दर्शन भी तो छुपा हुआ है। और मैं जब भी शशि कपूर जी को सोचूं तो इसी गाने के दृश्य याद आते हैं। बाहर बर्फ गिर रही है, अंदर राखी जी अपनी सहेलियों के साथ, और ये गाना झीलों के होठों पर मेघों का राग है। उफ, ये थे नीरज, उनके जैसा कोई और कहाँ।

दिल के आईने में हमने वो समा हमेशा हमेशा के लिए उतार लिया है। आकाशवाणी रांची की ओर से गीतकार नीरज को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

कार्यक्रम सांच सरगम अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के उपायुक्त को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर कला संकाय की टॉपर छोटी कुमारी की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कसमार के खैरा चातर गांव की रहने वाली इस छात्रा को पढ़ाई के लिए आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। इधर यह मामला सामने आने के बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो ने आज इस छात्रा को पूरे एक वर्ष की हॉस्टल फीस के रूप में 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने

के निर्देश दिए। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू से पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 90 जिंदा कारतूस, 1 नक्सली पाउच बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान नक्सली ने हथियारों के गुप्त ठिकाने की सटीक जानकारी दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया और हथियार बरामद किए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित बेलायडी शीतला मंदिर के समीप एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र का घेराव कर प्रदर्शन किया। भारतीय सब जूनियर पुरुष और महिला टीमें कल मस्कट में आयोजित होने वाली पहली FIH यूथ हॉकी 5-बेस एशियाई चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू करेंगी। यह 6 दिवसीय यह प्रतियोगिता पहले FIH अंडर 18 यूथ हॉकी 5-बेस विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफायर होगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 5:02 हो रहे हैं। श्रोताओं, शांतिकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ छवि। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:05 पर आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम जय भारती, जो कि फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। संध्या के 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका के बारे में। होलो गीत प्रस्तुत किया जाएगा सीनी माई आल्डा और साथियों के स्वर में। भेंट वार्ता आप सुनेंगे तसर कीट पालन से आर्थिक लाभ। भेंट वार्ताकार हैं जय सिंह डांगिल और उनसे बातें कर रहे हैं सुरेश चंद्र सोए। लोकगीत आप सुनेंगे नागपुरी में अमीन मांझी और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6 बजे पुनः पुलिये चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 से 6:30 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। 6:30 पर आप सुनेंगे विकास योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम सनमार्ग। 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 से रात्रि के 8 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 बजे से 8:45 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं आज प्रसारित होने वाले

रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आपको हम लिए चलेंगे हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र, जहां पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 से 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों की रंग। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जय भारती।

कार्यक्रम जय भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत सुना बहुत बहुत स्वागत है सैनिक भाई बहनों। सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म रोजा का ये गीत, हरिहरन की आवाज़ में ए आर रहमान का संगीत है।

0: फौजी भाइयों, हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से जय भारती कार्यक्रम। अब आपको सुनवाते हैं जुड़वा फिल्म का ये गीत, अनु मलिक की आवाज़ है और साथियों की देव गोहिल की बोल है, संगीत अनु मलिक का है।
1: लंदन की लड़की नाना, अमरीकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पारस की पोरी नाना, इंडिया आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट।

अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भारतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

फौजी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से कार्यक्रम जय भारती छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। नीति मोहन और विशाल ददलानी की आवाज़ है, इशा कम के बोल हैं।

फौजी भाई बहनों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी, बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोए का जोहार। श्रोता, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा में हम बातें करेंगे गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका विषय पर, मनोरंजन करेंगे हो लोग सिनेमाई अल्डा एवं साथियों के स्वर में, और भेंट वार्ता के माध्यम से भी हम जानकारी लेंगे, और अंत में हम पुनः मनोरंजन करेंगे नागपुरी लोकगीत से। श्रोताओं, हमारा देश ग्राम गणराज्यों का देश है। देश की लगभग 45 से 50 प्रतिशत आबादी की जीवन का आधार है हमारा कृषि, और देश की अर्थव्यवस्था में 17 से 18 प्रतिशत योगदान रहता है जीडीपी में, और लगभग देश में 91 करोड़ आबादी गांव में निवास करती है, और 63% की जीवन का आधार है पूरे देशभर में। और यदि हम झारखंड की बात करें तो लगभग यहाँ 2.5 लाख लोगों की आबादी का आधार है, जीवन का आधार है। झारखंड में लगभग 16,000 ग्राम सभाएं हैं और ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 लगभग है, और अनुसूचित क्षेत्र को रूप में सूचीबद्ध जो जिले हैं वहां लगभग 14,000 से अधिक ग्राम सभाएं मौजूद हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार 75% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है, और पूरे झारखंड के यदि हम ग्राम सभाओं की बातें करें तो 32,620 के लगभग है, और कुल आबादी 2.5 करोड़ आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गांव का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए 73 संविधान संशोधन, जहां संविधान में संविधान भाग 9 पंचायत को जोड़ा गया है, और स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज सरकार के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए संविधान के द्वारा 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों को शामिल किया गया है, और इन 29 विषयों में स्थानीय सरकार अर्थात पंचायती सरकारों को काम करने, बजट बनाने और योजना बनाने का अधिकार दिया गया है, और ग्राम सभाओं को उन योजनाओं को क्रियान्वित करने और गांव के सर्वांगीण विकास में इन विषयों पर ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। 11वीं अनुसूची में जहां ग्राम सभाएं काम करती है, पंचायती सरकार काम करती है, कृषि है, भूमि सुधार है, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु वनोत्पाद, लघु उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, सड़क, गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास, ये सारी की सारी विषय ग्राम सभा के क्षेत्र में आते हैं, और ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाता है। और 73 संविधान संशोधन और वर्तमान में झारखंड सरकार की पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज विभाग के माध्यम से स्थानीय सरकारों का गठन हुआ है, पंचायत ग्राम पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति के रूप में प्रमुख और जिला परिषद के रूप में त्रिस्तरीय सरकारों का गठन हो चुका है, और केंद्र एवं राज्यों

के माध्यम से आर्थिक सहायता भी प्राप्त किया जाता है। परंतु ग्राम सभाओं की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती है। उन्हें सही रूप से गांव का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए योजनाओं का चयन करना जरूरी है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सही रूप से धरातल पर लाने की सारी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की है। भारत सरकार और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो संपूर्ण राज्यों से संबंधित होती हैं, उनके लिए उनकी निगरानी करना, सही रूप से काम हो, इसके लिए भी ग्राम सभाओं की भूमिका अहम होती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी पर आधारित हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होने पर हम उस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और भारत जैसे विशाल देश में जहां लगभग 70% आबादी की जीवन का आधार कृषि हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां और भी जरूरी हो जाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके लिए ग्राम सभाओं को जागरूक होना होगा और राज्यों और केंद्र के साथ तालमेल कर सही रूप से योजनाओं का चयन हो और उन योजनाओं का सही रूप में क्रियान्वित हो, इसकी सारी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की होती है। इसके लिए ग्राम सभाओं को भी शिक्षित होना होगा। जिस प्रकार शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाता है, बजट बनाई जाती है, वैसा ही अब जरूरत है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से योजनाओं का चयन हो और स्थानीय सरकार जो पंचायती सरकार है सही रूप से बजट बने, तभी हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की महत्वपूर्ण परिकल्पना सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पूरी होगी। श्रोताओं से जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे सीनी माई आल्टा एवं साथियों के स्वर में गाए हो लोकगीत से। इस लोकगीत के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी लेते हैं कि वर्तमान समय में जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है और कृषि योग्य जमीनें कम हो रही है, ऐसी परिस्थिति में आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए मिश्रित खेती करना जरूरी है। तो इसी संदर्भ में आज हम जानकारी लेंगे, मिश्रित खेती अपनाकर आर्थिक आत्मनिर्भर बने। जानकारी दे रही हैं एक महिला उद्यमी कृषक रिंकी बांड्रा।
1: किसी भी राष्ट्र के उन्नति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार होता है और भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण आबादी 70-75% रहती है, वहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भी जरूरी है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मिश्रित खेती के संबंध में एक महिला किसान से बातें करते हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार, मैं रिंकी बांड्रा।
1: तो वर्तमान समय में आप मिश्रित खेती के संबंध में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए, ये आज जरूरी क्यों है?
2: देखने से आज हम लोगों का जनसंख्या बहुत बढ़ गया है और खेत जमीन भी हम लोग बांट बांट के छोटा होते जा रहा है। गांव घर में खेत जमीन सब भी छोटा होते जा रहा है, तो उससे हम लोग को भरपूर फसल अब नहीं मिलता है। जो खेती होता है वो भी हमारे लिए अब कम पड़ने लगा है, तो जगह कम और आवश्यकता अधिक हो गया है। इसीलिए हम लोग को मिश्रित खेती करना चाहिए जिससे हम लोग को आमदनी हमेशा आता रहे।
1: अच्छा, ये बताइए कि ये मिश्रित खेती क्या है एक्चुअल में, किस प्रकार खेती करते हैं, मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है?
2: मिश्रित खेती का मतलब है कि एक समय में बहुत सारा फसल लेना और बहुत तरह से खेती से आमदनी प्राप्त करना। मतलब जैसे हम लोग खेती, मतलब खेत में जो खेती कर रहे हैं, धान रुपाई, दाल या दूसरा कुछ भी, तो उसके साथ साथ में हम लोग पशुपालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित पालन।
1: अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है आज के समय में? ये धान, चावल, साग सब्जी के अलावा मछली, बकरी, सुअर या दूध उत्पादन की जरूरत है?
2: क्योंकि ये हमारे

0: खेती में जैसे आप बगान लगा लिए, बगान लगाने के साथ आपको गाय और बकरी भी पालना चाहिए। उससे क्या होता है, जो खरपतवार निकलता है और जो खेत का जो बेकार सामान निकलता है उसको आप गाय बकरी को खिला सकते हैं, और जो गाय बकरी से गोबर और जो ये निकलता है उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाय को आपने सब्जी का नीचे बेकार वाला हिस्सा आपने उसको खिला दिया, अब उससे गाय तो आपका पल गया, गाय से आप को दूध पा सकते हैं, दूध बेचकर आप आय कमा सकते हैं। तो गाय से फिर आपको गोबर का प्राप्त होता है जो आपके खेतों में खाद का काम करता है।
1: तो ये गोबर को हम क्या तालाब में या मछली पालन के रूप में भी हम उपयोग
0: इस्तेमाल
1: कर
0: कर
1: सकते हैं?
0: सकते हैं, उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर तालाब में आप गोबर डालते हैं तो उससे मछलियों को अच्छा खाद मिलता है और मछलियां तेजी से बड़ी होती है। तो इससे मैं आपको मछली पालन में अच्छा प्रॉफिट होता है।
1: अच्छा, इसमें और जानकारी दीजिए, क्या इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है या जो बाहर जो जा रहे हैं लोग, क्या इस पर हम मिश्रित खेती से क्या उनको मजदूरी के रूप में हम या मजदूर उन्हें बना सकते हैं या अपना मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्योंकि आज वर्तमान समय में देखा गया है कि बहुत सारे किसान गांव छोड़ करके गुजरात, चेन्नई या इस प्रकार जा रहे हैं। क्या मिश्रित खेती करने से इस पर काफी हद तक रोक लग सकती है, मजदूर हमें आराम से मिल सकता है?
0: मिश्रित खेती में आपको लेबर ज़्यादा लगता है, और हाँ इससे आप पलायन रोक सकते हैं, क्योंकि जब मजदूर के पास हर समय पैसा आएगा तो वो पलायन मतलब बाहर क्यों जाएगा, पैसा कमाने बाहर क्यों जाएगा। जैसे जिस समय खेती का समय नहीं होता है या बारिश कम होने से खेती अगर कम भी हुआ तो किसान जो है गाय से दूध निकाल सकता है, दूध बेच सकता है, मांस बेच सकता है, फिर क्या बोलते हैं मुर्गियों से अंडा प्राप्त कर सकता है, उसको बेचकर पैसा कमा सकता है, फिर मछली पालन कर सकता है। तो एक किसान के पास साल भर काम होता है
1: अच्छा, वृक्षारोपण या फलदार वृक्षों की भी इसमें मिश्रित खेती के
0: मिश्रित
1: अंतर्गत
0: खेती।
1: आता है।
0: हाँ फलदार वृक्ष का भी मिश्रित खेती में रहता है, लेकिन फलदार का वृक्ष का भी जो है फल का समय अलग रहता है और हर एक फल का अलग अलग समय रहता है। तो इसमें क्या होता है, गर्मी के समय जैसे आम निकल गया, फिर कटहल निकल गया, उसके बाद बरसात में क्या करेंगे, बरसात में कौन सा फल खाएंगे, और बरसात के समय में खेत में काम नहीं होता है तब वो मछली पालन पर ध्यान दे सकते हैं, मछली उस समय निकलता है,
1: अच्छा,
0: फिर
1: बत्तख या मुर्गी उनको भी बेच करके हम
0: बेचकर
1: परिवार को पाल सकते
0: पाल
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: अर्थात यह क्या इसमें बहुत ज्यादा जोखिम नहीं है इसमें?
0: ये मिश्रित खेती हमारे आर्थिक जोखिम को कम करता है
1: अच्छा, आर्थिक जोखिम को कम करता है।
0: करता है
1: वर्तमान समय में जो हम एक फसल लगाते हैं और एक समय में एक ही फसल लगाते हैं तो दूसरा समय में या दूसरा दिन हम नहीं बेच पाते हैं, तो क्या मिश्रित खेती करने से प्रतिदिन हम बेच पाएंगे फसलों को या अपने उत्पादों को?
0: बिल्कुल। जैसे जब आप मकई का समय आया आप मकई बेच लेंगे, और जिस समय भिंडी का समय आएगा भिंडी बेच सकेंगे, नेनुआ का समय में नेनुआ बेच सकेंगे, और आलू के समय में आलू बेच पाएंगे। सब तो एक ही सीजन में नहीं आएगा ना, तो सबका अलग अलग महीना होगा, अलग अलग समय रहेगा, तो वो धीरे धीरे करके आपको आर्थिक सहायता देता रहेगा।
1: तो इस प्रकार की जो मिश्रित खेती हम यदि करते हैं तो क्या जो हमारे जो मौसम की जो प्रकोप है यानी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि गर्मी के मौसम में खास करके देखा जाता है मार्च के बाद में लोग खेती करना बंद कर देते हैं क्योंकि उस समय इतनी तेज धूप रहती है, तो इस मिश्रित खेती से हमको उस समय कैसे फायदा होगा?
0: देखिए मार्च में

0: तो बारिश नहीं होता है उस समय, तो खेत खलिहान वाला काम खत्म होता है। खेत खलिहान वाला जब काम खत्म होता है तो आपके पास गाय है, बकरी है, मुर्गियां है, तालाब है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं उस समय, तो वहां से आप का इनकम होगा।
1: अच्छा, कहने का मतलब है कि यदि साग सब्जी नहीं हो रहा हो तो मेरे यहाँ जो पशु हैं या मुर्गी है या बत्तख है उससे भी हम आय प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, इसके साथ साथ और जानकारी दीजिए कि इसके अंतर्गत किस प्रकार की मिश्रित खेती कर सकते हैं हम, जैसे धान के साथ या चना या इस प्रकार का यदि हम सोचते हैं तो क्या उसमें संभव है इन सबों को एक साथ किया जा सकेगा?
0: कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सा पौधा ऊंचा होता है और कौन सा निम्न ऊंचाई वाला है और कौन सा छोटा पौधा है। अब जैसे रहड़ लगाते हैं, रहड़ के साथ अगर आप भिंडी लगा देंगे तो दोनों ऊंचा, दोनों मतलब मध्यम साइज का, मतलब एक हाइट का पौधा होता है, तो दोनों बढ़ेगा कैसे?
1: अच्छा,
0: दोनों में उत्पादन, फिर दोनों ही चीज का उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको पहले पहचानना होगा कि किस आप कौन सा चीज का खेती कर रहे हैं और कौन सा फसल लगा रहे हैं, उसका हाइट कितना जाता है और उसके साथ में आप क्या लगा सकते हैं। अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो आप उसके साथ में मकई तो कभी नहीं लगाना चाहिए, उसके साथ में आपको उससे छोटा पौधा लगाना चाहिए। जैसे आप जहाँ भिंडी लगा रहे हैं उसके नीचे आप आलू तो सीजन नहीं होता है, उस समय आप मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, कोई दूसरा साग लगा सकते हैं, भतुआ, धनिया, ऐसा चीज लगा सकते हैं जिससे कि उसका भिंडी ऊपर हो, बड़ा हो जाए और नीचे छोटा फसल रहे,
1: या अर्थात कंदयुक्त फसलों को भी हम लगा सकते हैं। जिसमें धूप का उतना जरूरत ना पड़े,
0: नहीं पड़ता।
1: हाँ। यानी इस प्रकार के
0: या ऐसा चीज जिसको ज्यादा खुरपी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अगर भिंडी का खेत में आप गोभी लगा देंगे तो खुरपी कैसे करेंगे।
1: अच्छा, टमाटर को भी उसके साथ नहीं लगा सकते जिसमें फूल लगते हैं, उसको नहीं लगा सकते।
0: नहीं लगा सकते।
1: जैसे अभी हम लोग साग लगाते हैं या धनिया, तो धनिया को हम लगा सकते हैं।
0: धनिया जैसा चीज आप उसके साथ में लगा सकते हैं।
1: अच्छा, तो यदि हम पेड़ को भी लगा रहे हैं यानी फलदार वृक्षों को लगा रहे हैं तो फलदार वृक्षों के नीचे हम क्या लगा पाएंगे मिश्रित खेती के अंतर्गत, और तालाब के मेड़ों में हम किस कैसे उपयोग कर सकते हैं मछलियों के साथ साथ?
0: देखिए, तालाब के किनारे जो मेड़ है उसमें आप रहड़ लगा सकते हैं, उसमें बहुत बढ़िया दलहन, रहड़ का दलहन के रूप में आप रहड़ को लगा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा तैयार होता है वो फसल। इसके अलावा है आप तालाब के किनारे मेड़ में आप ये जाली लगाकर मुर्गी पालन और बतख पालन कर सकते हैं, क्योंकि उसका अवशिष्ट जो गिरता है वो भी मछलियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और जहाँ अगर आपका पानी थोड़ा जमा होता है तो वैसे आसपास में आप केला लगा सकते हैं, क्योंकि केला के पौधे को पानी ज़्यादा चाहिए, और अगर तालाब किनारे अगर आप केला लगाते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा और अच्छा फल देगा।
1: अच्छा, इसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। अगर हम इस प्रकार मिश्रित खेती करते हैं तो क्या हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे?
0: बिल्कुल कर पाएंगे।
1: अच्छा, तो इसके साथ साथ जो हमारे जो गांव से जो पलायन इतना तेजी से हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास अब जमीनें कम हो रही, जैसे आपने बताया आबादी तेजी से बढ़ने के कारण अब खेत कम हो रहा है तो भूमिहीन हो रहे हैं लोग, तो क्या भूमिहीन लोगों को भी हम इस मिश्रित खेती से हम रोजगार दिला पाएंगे?
0: उसको हम इस काम में लगाएंगे तो एंगेज रहेगा, और उसको देखिए हर कोई आय के लिए भटक रहा है, अगर आय गांव में ही मिलेगा, गांव घर में ही मिलेगा, तो आय के लिए दूसरी जगह क्यों जाएगा।
1: बिल्कुल आपने सही जानकारी दी है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अपने समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में ग्राम स्वराज्य की बातें कही थी। हमें लगता है कि ये ग्राम स्वराज्य की जो परिकल्पना है, ये मिश्रित खेती या इस प्रकार की खेतों को बढ़ावा दे करके हम एक ग्राम स्वराज की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत दे पाएंगे। और वर्तमान समय जो केंद्र सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत, जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा तो देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। हमें लगता है कि इस मिश्रित खेती से हम अपने गाँव को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। रिंकी जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: जोहार।
2: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे मिश्रित खेती अपनाकर आर्थिक आत्मनिर्भर पाए। इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र स्वे को विदा दीजिए। जोहार।

सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कसमार के खैरा चातर गांव की रहने वाली इस छात्रा को पढ़ाई के लिए आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरायकेला मंडल कारा का आज संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह, उपायुक्त नीतीश कुमार और पुलिस अधीक्षक मनोज स्वारगिरी समेत अधिकारियों ने रसोई घर बंदी वार्डों, अभिलेखों और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी भी दी गयी। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने आज जमशेदपुर पश्चिमी और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्रों का दौरा किया। मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष सहायता शिविर लगाए जा रहे हैं। इधर राज्य नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण का निरीक्षण किया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वा जिले के भंडरिया बड़गढ़ मुख्य मार्ग स्थित

0: सालो जंगल में आज सुबह अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। खूंटी जिले के तोरपा मुख्य मार्ग स्थित दो दुकानों से बीती रात करीब 10 लाख रुपए के आभूषण और नकद की चोरी कर ली गई। घटना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने दुकान में लगे कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा, बस कुछ ही पलों में।

Nyuka tejar ben ayu michi ben galing aling hero parob riya durang. Chine mente chi abu na do hero parob riya samay mina ina mente hero parob riya na do abu jaga jaga tai tai rado hero parob na hobandan giya ono hero parob abu ina lagi tayariyo ispure bugil kate chalao kana. Na jaga jaga re tai tai re abu काड़ा लसट को हबंतना चिने मेनते चे अबु निन सुमाय रे हेरो परम अबु होबाना इना मेनते आते हेरो रिया जो कुछ अबु बाबा चास को बु चासय तना इन रिया संबंधित तगे अबु एनन हेरो परम को दो होबाना अनो अबु निनाते एसो पुरे रासा रसकेते अबु निया को बु मनतिंगिया अनो बंगा बुरु को होबाना मारे अंडर दलिंग आयु मिचिबिना एला हेरो परोब्रिया दुरुंग.

0: विशाप लेना कर
1: मारो
0: एंड्रियो कॉलेज पढ़ा तन का कहीं तकिन विजय वस्त्र की तब धर्म जा दर करतना सभी एना किन तना बेड़ा ओके जा सही बना एना से ना एना एम ओआरडी तक हम बवता रे बंद कर हम
2: जगह से ना मारो लो बाबू पीले की जो लेना
1: नहीं मां पांगी जो कना तो

0: ஸ்ரீதூட ஸ்ரீதார் நீரோ சங்கர் நிக்கின் யமா தீர் யமாத்து கிங்கன அம் நிக்கின் புகின் ஹாக்கின் பை கிங் மே என்ன மென்த்து அஞ்சா பா காவரு கேத்தே அவனை படா வச்சு பின்தன
1: இன்னும் கொஞ்சம் அதான வைத்து அஞ்சா பயத்தோ இமித்தே கெல்பார் திரும்ப ஹவாலினா ऐस पूरे पाइटी पाइटी से अंडो नीचे जमकड़े थे अरे लिवर खराब है ना
0: घटना चिकी ना कतरा सिरेदार उन्ने भाई अभी से तक ऐसी जुगा करना अज्ञा बाबू नीरो नंतोषम पीएसी परीक्षे एमिया इन्ना लगी दबेंता थे
2: ऐसे बढ़िया ऐसे रहा सकाजी नीरो बाबू आबू अतुरे चिना कजी रे पी क्यों नन अंचल रे मिये रत्न कामा टका पैसा रे पड़ा होवन कजी तो खा गे अया लगन आंतरिक चेष्टा उधर करा किना मन तन नीर बाबू
1: ठीक बन कजी तने माजन बाबू बाउने चेष्टा ते के इमी मोरा तल यायरा कना बांडे तो इगा इन तो कजी तने आमलो फलपी के के में सीधर कासी उन पंडितम ते दरकार बनवा
0: अन्या मी अनुरोध भर के परिड बाबू
2: किना कजी बन
0: अज्ञा नियाडा शंकरा परीक्षा बीस एक सौ पचास टका लिखा दाखल का अभाव
2: इन्हें भाई में तैयार था जी निरंजन बी एस सी शंकर आई है तो
0: या
2: अंतर रहना क्यों नहीं कर मिला
0: अच्छा बाबू अब इन दानिया संसार कबर सभी इन दाना पाना वर्षीन जमिया करे ना में करना निमित्त का कोने ते ना में
1: अब इन जब ये तीन के ते बीस सौ दस टका पैसा में निमाली नहीं तो अब इन सारे सभी दिन लगे प्रत्यक्ष नहीं तय ना है वही बाबू
0: அலியா கதி ஜா சிலகத்ர ரிகேம் புரிடாபு ஒத்தேச சபி நபெந்தார் பந்தபாக்கன நா ஹென்னோட்லிங் எல்லாம் தூவின
2: நந்த சரிதா அம்மா அவ சைக்கன் ரேதே கதி ரிதியா கட சிகாரி கதி
0: கே கர்க்கியம்
2: பல அனிதர மாச கதி தன்ற மைதர ஆம் நிஜம் கதி தேச்சி வினா க கரண் நியந்த பக்க பைசா க இனைதர சிகாரி என்ற ஒத்தேச அங்கே தெரிய சமய சமய ரேதக கதி தாவதன
0: एन काजी तो ठीक किया एन रो ना लगे नाली चिकिना बनो की वाइटम की विशेष कहते जदी
2: जागे सिरदार अन अपने हुकुम बिना हुकुम बिना कायदा तो ऐसे या तकर कारी ना कर बिना वा तना अपने दरबार या नियम बिना बाय कहते दिन कायदा ते तकर पैसा मत ले दिन तकर करना
0: बाबू अबे ना कटा सुगरे सरन तना नी पैसे दिल्ली कहीं मत बनता बहुत सनास होता
2: हाँ हाँ बताओ किन्हें आगे सभी किन्हें
0: वैसा काम नहीं आन रहे नैनो ना जीवन नष्ट होगा परिदा बाबू अपुन्या उम्र और पार पंद्रह कर औरते कहीं किन्हें अबे नबेन कितनी किन्हें
2: हाँ कभी रुका प्लीज बनो हम मिला सके हम चिकने कभी प्यार से ना उतना अपने आवता सब सभी हम चकर डाल लो किन्हें
1: हाँ जी चिकने रह बन चकर अपुन्या डीएम नो बोलते अंड हर की नो बोलते एम्बुलेंस की ते अलिया सभी नोटिया
2: जो जो सुना बन अन बिना नियम कानून तो कोई उठा कपाल से काम नहीं रखा हाँ इतना ही ना उपकार कर तेरे अन तो कर दो मैं तो रंग कर दूँ
0: बाबू ना आज के ना यूँ कोई कंच कर कर को जपा जपा दिलिया मौजूरे ओ कोई कहो को कहीं दिए ची फिर तो ना एक तो कम बन पांकी बन जीवन रोको या मिल पोई से काम जाना करा
2: कभी हम तमाम भरा बिना नियम कानून तो टका सारी मामा बाय सारी मामा जो जो बहो
0: चलो होली किला ना चिके कजी में गोरी वाल में जन्म करना अब यह मरा हो रही टाइम से बनो उच्च सिक्के नम से बनो अब गोरी को अब तेर किना बनो
1: बाउती
0: अन्यत्र मो अन्य पदार्थ बाबा कजी मुड़ी कजी काइन फाइट दिए ना होली काइन फाइट दिए
2: अमान सरिया सरिया अलीम
0: कजी बहो
2: आपका ऐसा यंत्र पच्ची में अपने संग नहीं है
0: बाबू
2: नहीं ना साजी होगा तो ना हम चीज का अंतर ऐसा कर रहे हैं अंतर जी किधर हम उनका के अंतर में अब कभी प्यार में ना जो भी राजी बिना तो कभी नहीं हाँ कितना कभी मामा
0: कजी कजी बाबू
2: हम तो ना

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सन्मार्ग।

0: विकास योजनाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम सन्मार्ग में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए, जब हम विकास की बातें कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं, कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। श्रोताओं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं कि फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु जो है 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक खास बात मैं बता दूं कि एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। इसके लिए अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार। तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। एक और खास बात मैं बता दूं श्रोताओं, किस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके लिए अधिक जानकारी हेतु आप जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज जब हम बातें कर रहे हैं मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना पर, तो इस पर कुछ हम और विस्तृत जानकारी लें कि बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना क्या है। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अनुराग मेहता, जो निर्देशक हैं फोस्टर केयर सोसाइटी उदयपुर राजस्थान के। श्रोताओं नमस्कार, आज हम अपने श्रोताओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बातें करेंगे। ये है फोस्टर केयर। आखिर ये क्या है, ये कैसे इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, इससे क्या लाभ होता है, इस पर आज हम कुछ जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं फोस्टर केयर सोसाइटी उदयपुर राजस्थान के निर्देशक अनुराग मेहता जी।
1: नमस्कार, जोहार, सभी को जोहार।
0: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये फॉस्टर केयर है क्या।
1: देखिए, फॉस्टर केयर बताने से पहले मैं आपको इसका ये बताना चाहूँगा कि फॉस्टर केयर प्रोग्राम झारखंड में पहले से चल रहा है। 2018 में इसकी गाइडलाइन भी आई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को लेके जो अभी यूनिसेफ झारखंड के साथ, CCR, NUSRL और झारखंड राज्य की बाल संरक्षण संस्था के साथ मिलकर हमें 3 जिलों के अंदर, जो कि वेस्ट सिंहभूम है, हजारीबाग है और बोकारो है, इन 3 जिलों में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको देख के इसको फॉस्टर केयर के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो मैं इसकी भूमिका आपको यही बता दूं कि फॉस्टर केयर पे हमको काम करते करते झारखंड में पूरा 1 साल हो चुका है और उसी के बारे में आज यह वार्तालाप करके मैं आपको फॉस्टर केयर के बारे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि फॉस्टर केयर क्या है।
0: एक बात हम जानना चाहेंगे, जब हम इस विषय को जानकारी लेने के लिए आपके पास हैं, तो सबसे पहले तो हमें, जब हम बच्चों की बातें करते हैं, तो भारत में बच्चों से संबंधित प्रमुख कानून जो है कौन सा है।
1: देखिए, बच्चों से संबंधित जो भारत का प्रमुख कानून है वो है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जो कि संशोधन हुआ है 2021 में, और उसी के अंदर ये सारा सब कुछ जो बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और न्याय सुरक्षित करता है, ये कानून। इसके अंतर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधि से संघर्षरत, जिनको अपन CICL बच्चे भी कहते हैं, और एक होता है CNCP, ये 2 तरह की कैटेगरी होती है, और बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई है और वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था शामिल है।
0: अच्छा, ये जो आपने कहा कि देखभाल की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे होता है?
1: देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले वो बच्चे कि जिनके माता पिता तो हैं पर कहीं किसी कारणों से वो उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और वो कहीं या तो मिसिंग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, या वो बच्चे घर से भागे हुए होते हैं, या उनका कभी किसी, मतलब कोई उनका देख रेख करने वाला उनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसे बच्चे देखभाल की संरक्षण और आवश्यकता के वाले बच्चे कहलाते हैं, जो कि JJ एक्ट जो कहलाता है उसकी सेक्शन 214 के अंतर्गत आता है। फॉस्टर केयर देखिए एक परिवार आधारित देखभाल का एक अंग है। फॉस्टर केयर का मतलब होता है कि जो बच्चे जिनके माता पिता हैं लेकिन वो किसी कारण से उनकी देखभाल नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरे परिवार के साथ उन बच्चों को रख के और उनकी सामाजिक, आर्थिक और उनकी सामाजिक परिवेश को उनका सुधार किया जा सके, ताकि बच्चे लंबे समय तक बाल गृह में न रहकर, या कहीं कम्युनिटी में भी अगर होते हैं, समुदाय में भी होते हैं, तो वो स्कूल नहीं जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो सरकार ने एक ये कानून बनाया कि एक स्कीम बनाई थी कि जो फॉस्टर केयर पालन पोषण देखरेख अधिनियम भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को किसी परिवार के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखा जाता है।
0: ये कितने प्रकार का होता है?
1: ये वैकल्पिक और फॉस्टर केयर 2 तरह का होता है। एक होता है बहुत कम अवधि के लिए होता है, और एक होता है लंबी अवधि के लिए।
0: अच्छा।
1: और एक होता है इसके अंदर कि शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जिसको इंडिविजुअल फॉस्टर केयर बोलते हैं, एकल परिवार फॉस्टर केयर कहलाता है, और एक होता है ग्रुप फॉस्टर केयर, जहाँ पे एकल जो फॉस्टर केयर होता है उसके अंदर आप किसी भी व्यक्तिगत, उसको बोलते हैं कि व्यक्तिगत पालन पोषण देखरेख बोलते हैं, उसमें अधिकतम आप 2 बच्चे ले सकते हैं। अगर किसी के खुद के 2 बच्चे हैं तो वो 1 बच्चा ले सकता है, और अगर किसी के 1 भी बच्चा नहीं है तो अधिकतम 2 ले सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिबलिंग, यानी कि अगर भाई बहन है और वो संख्या उनकी 4 है या 5 है, तो अगर कोई परिवार सक्षम है तो वो उन 4 बच्चों को भी उसमें फॉस्टर केयर में रख सकता है। और एक होता है समूह फॉस्टर केयर, उसमें अधिकतम जो जैविक जो बच्चा होता है किसी भी परिवार का, उसके अलावा मैक्सिमम 8 बच्चों तक उसके अंदर रख सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और फॉस्टर केयर लंबी दीर्घ अवधि के लिए भी होता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, और 18 साल तक के लिए भी हो सकता है, और ये 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है।
0: अच्छा, ये फॉस्टर केयर और दत्तक ग्रहण में क्या अंतर है?
1: देखिए, ज़्यादातर लोग, सबसे बड़ी बात क्या है कि कहाँ आके थोड़ा सा भटक जाते हैं कि उनको फॉस्टर केयर और दत्तक ग्रहण एक ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, फॉस्टर केयर तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें वैकल्पिक व्यवस्था, और जहाँ की दत्तक ग्रहण एक पूरा परमानेंट व्यवस्था है, दीर्घकालीन के लिए, जहाँ बच्चा कि बिना किसी रुकावट के उस परिवार में लंबे समय तक रह सकता है और वो उन्हीं का उसका सारे कानूनी अधिकार उस बच्चे को मिलते हैं। परिवार के अंदर जो भी उसको अधिकार होते हैं या उसका संपत्ति का अधिकार होता है वो सब मिलते हैं। लेकिन फॉस्टर केयर में यही होता है कि फॉस्टर केयर के अंदर ये कोई इसकी अवधि बहुत कम होती है और ये एक टेम्परेरी जिसको बोलना चाहिए कि एक बहुत ही अल्प अवधि के लिए भी रख सकते हैं, लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। और इसमें परिवार को बच्चे का अधिकार परिवार के पास नहीं होता है, वो अपना नाम नहीं दे सकते हैं इसके अंदर।
2: अच्छा।
1: और ना बच्चा कभी इसमें प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकता है।
2: अच्छा।
1: और बच्चा चाहे या परिवार चाहे, जब तक वो बच्चा उस परिवार में रह सकता है और परिवार नहीं चाहता कि बच्चा अब नहीं रहे, तो वो बच्चा वापस से संस्थागत देखभाल में जा सकता है या किसी दूसरे फॉस्टर परिवार में जा सकता है।
0: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये समूह फॉस्टर केयर में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, और एक और भी हम बात जानना चाहेंगे कि इसकी न्यूनतम उम्र क्या होगी।
1: समूह के अंदर अधिकतम बच्चे 8 जा सकते हैं, जो कि अगर किसी परिवार के जैविक बच्चे 2 हैं तो मैक्सिमम 8 बच्चों तक जा सकते हैं। लेकिन अगर यही वही बताया जैसे कि सिबलिंग के केस हो गया, अगर कोई 10-12 भाई बहन है तो सिबलिंग के केस में संख्या बढ़ सकती है। और न्यूनतम अवधि कोई भी जो फॉस्टर केयर में बच्चे को लेना चाहते हैं परिवार, उनकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 55 से 60 वर्ष होनी चाहिए इसके अंदर। और अगर दोनों पति पत्नी का दोनों का अगर समूह दोनों का देखें कि जोड़ देखें अगर उम्र का अगर 70 मिनिमम 70 वर्ष होनी चाहिए।
2: अच्छा।
1: और अधिकतम दोनों का मिला के 110 से ऊपर 115 से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा। और एक बात भारतीय होनी चाहिए,
1: वो मैं उसमें क्या होता है, देखिए कानून में जे जे एक्ट में तो लिखा हुआ है कि जे जे एक्ट का सेक्शन 44 के अंदर ये लिखा हुआ है जहाँ फॉस्टर केयर को पूरा दर्शाया गया है, उसमें लिखा गया है कि भारतीय होना चाहिए। लेकिन हर स्टेट का क्या होता है कि अपना अपना अलग अलग रूल बना सकते हैं, अपनी अपनी गाइडलाइन बना सकते हैं। तो झारखंड के लिहाज से मैं कहूँगा कि वो झारखंड का निवासी होना चाहिए, उसकी दो उनका वो जो जो भी पति पत्नी उसको लेना चाहें वो शादी उनका 2 साल कम से कम मिनिमम 2 साल उनका शादी को होना चाहिए, और 6 से 12 वर्ष के बच्चे इसमें जा सकते हैं। और इसके लिए उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: उनका माता पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उनका अधिकतम जो का जो एज लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने बताया आपको।
2: अच्छा।
1: कि अधिकतम दोनों का अगर वैकल्पिक है तो 115 से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
0: अच्छा, बातों बात में एक मेरे जहन में बात आ रही है कि ये जो एकल माता पिता कौन होते हैं और किस प्रकार बच्चे को।
1: एकल माता पिता वो होते हैं, या तो देखिए एकल माता पिता वो होते हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और कुछ होते हैं कि जो अगर फादर की या मदर की किसी दोनों में से एक की डेथ कर गया हो कोई, या किसी का विवाह विच्छेद हो गया हो जिसको डाइवोर्स भी बोलते हैं अपन, ये एकल माता पिता कहलाते हैं। और एकल माता पिता के लिए ये रूल है कि एकल पिता कोई भी बालिका को फॉस्टर केयर में नहीं ले सकता है, लेकिन एकल माता जो है वो बालक या बालिका दोनों को ले सकती हैं।
2: अच्छा।
1: फॉस्टर केयर के अंदर दोनों में से किसी को भी ले सकती है। उसके अच्छा। लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एकल पुरुष के लिए बाध्यता है कि वो बालिका को फॉस्टर केयर में नहीं ले सकता है।
0: लेकिन मान लीजिए कि उनके पिता नहीं है, हम यूं कहें माता है केवल, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए।
1: मिनिमम बताया ना जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 35, मतलब 35 से ऊपर ही होना चाहिए। 35
0: अच्छा।
1: से नीचे में वो फॉस्टर केयर के लिए एलिजिबल नहीं होगा।
0: अच्छा, अच्छा।
1: उसके लिए नहीं होगा वो।
0: एक बात और कहना चाहेंगे कि फॉस्टर केयर में क्या कोई वित्तीय सहायता का भी,
1: फॉस्टर केयर में वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। मिशन वात्सल्य के तहत इसके अंदर वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी भी परिवार को जो फॉस्टर केयर में बच्चे को रखेंगे उनको 4,000 प्रतिमाह सरकार की तरफ से मानदेय मिलेगा। लेकिन उसके लिए कि उस परिवार का जो सालाना जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा उनका सालाना इनकम होगा तो वो उस जो वित्तीय सहायता है उसको पाने के पात्रता नहीं रखते हैं।
0: चलते चलते एक बात और हमें बता दें कि अल्पकालिक फॉस्टर केयर और दीर्घकालिक फॉस्टर केयर में
1: अल्पकालीन फॉस्टर केयर से आप समझिए कि अल्प अपने आप में बोल रहा है कि बहुत छोटे समय के लिए, मतलब 1 साल मैक्सिमम 1 साल तक आप रख सकते हैं अल्पकालीन के लिए, और दीर्घकालीन के लिए जब तक बच्चे का मतलब होता है कि 0 से 18 की श्रेणी में जो भी आता है वो बच्चे की श्रेणी में आता है। अगर बच्चा 18 से ऊपर हो गया तो वो बालिक की श्रेणी में आ जाता है, तो वहाँ पे ये कानून और जे जे एक्ट दोनों इसमें लागू नहीं होता है।
0: अच्छा अच्छा। अभी रेडियो सेट के नज़दीक जो भी हमारे श्रोता बैठे हैं, ये जो आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो उनके जहन में भी हो रहा होगा कि हम भी पोस्टल केयर का भागीदारी बने, तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे और किस तरह इसका काम करेंगे कि ताकि उन्हें वो बच्चा मिल सके।
1: बिल्कुल, देखिए इसमें फॉस्टर केयर के अंदर जो भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का जो काम है वो दो ही संस्थाएं इसके अंदर जो हैं देखती हैं। एक होती है कि जिले में फॉस्टर केयर का कार्यान्वयन देखने के लिए बाल संरक्षण इकाई है, एक तो बाल संरक्षण इकाई और दूसरा है बाल कल्याण समिति। ये दोनों ही इकाई के अपने अपने रोल्स हैं जिसको कि इनको जब भी अगर वहाँ इसको अगर एप्लीकेशन देनी है तो सबसे पहले उनको एप्लीकेशन है बाल संरक्षण इकाई में होता है जो कि आपका चाईबासा में ही स्थित है और वहाँ जाके आप आवेदन अपना दे सकते हैं। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसमें उनका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, उनका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, उनका आय प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, चिकित्सीय प्रमाण पत्र लगेगा। चिकित्सीय प्रमाण पत्र में एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा गया है कि इसमें जो भी माता पिता अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए आवेदन करते हैं,

0: उस संस्था में या कहीं काम करता है उनका मित्र, वो वहाँ का सदस्य हो सकता है या फिर उनका पड़ोसी हो सकता है।
1: अच्छा, बाल कल्याण समिति के फॉस्टर केयर में क्या भूमिका होती है?
0: बाल कल्याण समिति का फॉस्टर केयर में बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जिले के अंदर किसी भी जिले में बाल कल्याण समिति होती है, वो जितने भी जो CNCP बच्चे होते हैं जिनको देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता, उनका पूरा जो कानूनी अधिकार होता है वो बाल कल्याण समिति के पास, उनका लीगल राइट्स, लीगल गार्जियन जिनको बोलते हैं, वो बाल कल्याण समिति ही होती है। तो बच्चे को जब फॉस्टर केयर में देना होता है तो उसका जो ऑर्डर और प्लेसमेंट का जो भी काम होता है वो फॉस्टर केयर से रिलेटेड होता है, तो वो बाल कल्याण समिति ही करती है। फिर फॉस्टर केयर में देने के बाद जो उसका हर महीने का एक होता है कि भाई हर महीने उनको परिवार को ये देखना है कि बच्चा जहाँ रह रहा है ना तो बच्चे को कोई समस्या हो ना परिवार को कोई समस्या हो, तो फिर अगर कोई ऐसा होता है तो उसकी काउंसलिंग भी की जाती है और बच्चे को लंबी अवधि तक परिवार आधारित देखभाल रखने से बच्चे का मानसिक, शारीरिक और उसका जो सामाजिक होता है वो विकास, बच्चे का विकास अच्छा होता है। जहाँ तक कि अभी हमने जब जो इसके ऊपर मैं पिछले 2013 से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और हमने इसके ऊपर देखा है कि बच्चा जब एक परिवार में जाता है तो उसका जो विकास होता है वो अपने आप में बहुत बढ़िया विकास होता है, और जहाँ की देखा जाए तो संस्था में अगर वो लंबी अवधि तक रहता है तो उसका वो इतना संस्था में देखिए रहता है बच्चा, तो उसको खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, उसको छत मिलती है, उसको पढ़ाई मिलती है, लेकिन जो एक परिवार का जो प्यार, सामाजिक जो सोशल जो उसको सिक्योरिटी होती है वो एक परिवार में आने के बाद ही उस बच्चे को मिलती है।
1: अंत में हम ये जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि फोस्टर केयर बच्चों की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकता है।
0: देखिए, फोस्टर केयर बच्चों को एक सुरक्षित पारिवारिक वातावरण देता है और जिससे कि बच्चे का उसका भावनात्मक और मानसिक विकास बेहतर होता है, इससे उसमें बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आता है, वे समाज में एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन पाने के लिए तैयार हो पाते हैं। साथ ही साथ संस्थागत जीवन में बाहर निकल बच्चे को अपनापन, स्थिरता और भविष्य की बेहतर दिशा प्रदान करता है।
1: अनुराग जी, अंत में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम हम हर बच्चे का जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमने एक बच्चे के भी जीवन में खुशियाँ ला दी तो वो अपने आप में एक बहुत ही नेक और पुण्य काम होगा। और जैसा कि मैं पिछले एक साल से मैं यहाँ पे हर महीना मेरा विजिट होता है और इन तीनों जिलों में होता है, जैसे बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया और पश्चिम सिंहभूम, लेकिन मैंने पाया है कि सबसे अच्छा जो काम अभी तक हो रहा है वो पश्चिम सिंहभूम में हो रहा है। और पिछले एक साल में हमने 11 बच्चों को परिवार आधारित देखभाल फॉस्टर केयर में प्लेस कर दिया, जो कि 5 परिवारों के अंदर वो बच्चे रह रहे हैं, जिसमें चार, एक परिवार में 4 सिबलिंग रह रहे हैं, जो 4 भाई बहन रह रहे हैं, एक परिवार में 3 भाई बहन रह रहे हैं और बाकी एकल माता, एकल ही रह रहे हैं बच्चे। और जब मैं इन बच्चों से जब भी आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार इन बच्चों से और परिवार से मिलूँ, तो जब भी मैं मिलता हूँ तो एक बच्चे और परिवार के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है, तो उससे बड़ा आनंद कोई नहीं हो सकता कि वो जो बच्चे वहाँ उस फॉस्टर केयर में गए उसके बाद से जो उनके जीवन में और उनके दिनचर्या में जो परिवार के भी बदलाव आया है, साथ साथ बच्चों के भी बदलाव आया है, तो वो एक बहुत सुकून देता है। और इसमें मैं पश्चिम सिंहभूम की जो बाल संरक्षण इकाई है, बाल कल्याण समिति है और जो यूनिसेफ के साथ मेरा जो कोलैबोरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, उससे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं और भविष्य में हम बेहतर, इसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।

0: मैं ईरा जोरवाल, सहायक समाहर्ता पश्चिमी सिंहभूम के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी से विशेष अपील है कि जिले में मिशन वात्सल्य योजना संचालित है। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के जरूरतमंद बच्चों की सभी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला एक समेकित प्रयास कर रहा है। इसमें 4,000 रुपए प्रति माह की स्पॉन्सरशिप दे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं जो दिव्यांग हो, किसी विशेष गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, अनाथ हो अथवा ऐसे एकल परिवारों से हो जिसमें माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है। आमजनों से अपील है कि इस स्कीम से संबंधित बाकी की जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय अथवा बाल संरक्षण कार्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद।
1: तो इसी के साथ ही हमारा आज का सन्मार्ग कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले बार कुछ और विकास योजनाओं पर हम बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार।

0: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में निभा सकती है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। बुजुर्गों और दिव्यांगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का ऐलान, अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में पलाश दीदी कैफे का कारोबार 10 करोड़ रुपए के पार, 2000 से अधिक महिलाओं की आजीविका हुई मजबूत। और राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप झारखंड राज्य कुश्ती संघ के नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, चुनाव का रास्ता साफ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नवाचार और वैश्विक साझेदारियों के जरिए पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से लिखे एक लेख को साझा किया है। इस लेख में वित्त मंत्री ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पों को बाजार तक पहुंच हासिल करने और स्थायी आजीविका सृजित करने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से कोई भी नागरिक जानकारी के अभाव में वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों से गणना प्रपत्र भरने, आवश्यक दस्तावेजों और समय सीमा की सही जानकारी हर घर तक पहुंचाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बीएलओ को लगातार प्रशिक्षण देने और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, आदिवासी समुदायों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक विशेष रूप से जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने आम लोगों से नागरिक मतदाता सूची में अपनी सही और अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करने की अपील की है। मंत्री आज गिरिडीह स्थित अपने आवासीय कार्यालय में अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत

0: ऐसा ही आगे प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए मैं तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि एसआईआर की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में एनुमरेशन फॉर्म भरने में थोड़ी शीघ्रता दिखाएं, तो मुझको उम्मीद है कि प्रबुद्ध मतदाता मेरी तरह अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के इस प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करें।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मंत्री कल जामताड़ा सदर अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के बाद आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल हिंसा का नहीं बल्कि सेवा का केंद्र है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर धनबाद में युवा संगोष्ठी आयोजित की गई। संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्यों समेत पंच परिवर्तन के विषयों पर चर्चा हुई।
2: हमारा पंच परिवर्तन का कार्यक्रम था संघ की ओर से, और पंच परिवर्तन में युवाओं का योगदान, अगर आप बोलते हैं कुटुंब प्रबोधन, अगर आप बोलते हैं कि स्व का बोध और सामाजिक समरसता की भावना, पर्यावरण का मैनेजमेंट, ये सारी चीज हमारे युवा वर्ग से की तरफ से आनी चाहिए, उनमें उनकी सहभागिता की बहुत आवश्यकता है।
1: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि एक शिक्षित समाज ही मजबूत, जागरूक और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मंत्री आज रांची स्थित हज हाउस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रही थीं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनएक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने को लेकर विपक्षी दलों की चिंताएं हैं।
3: झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा, तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे।
1: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि आज झारखंड में पलाश दीदी कैफे महिलाओं के आत्मविश्वास और उद्यमिता की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि आज 2000 से अधिक महिलाएं कैटरिंग और सामग्री आपूर्ति के माध्यम से अपनी आजीविका सशक्त बना रही हैं। मंत्री ने कहा कि यह पहल 10 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर नई सफलता की इबारत लिख चुकी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू से पूछताछ के बाद आज पुलिस ने जंगल से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 90 जिंदा कारतूस और एक नक्सली पाउच बरामद किया है। पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान नक्सली ने छुपाकर रखे गए हथियारों के ठिकानों की सटीक जानकारी दी।
4: इनके द्वारा बताया गया कि कहां से आप इनके ये हथियार छुपा के रखे हैं, तो इसी दौरान हम लोगों ने छापेमारी करके रविंद्र गंजू के पास से एक स्वचालित AK-56 राइफल के साथ इसकी 2 मैगजीन, 90 चंद्र जिंदा कारतूस और एक काले रंग का पाउच बरामद किया है।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना में भाग लिया। श्री सेठ ने मोरहाबादी के हरिहर सिंह रोड में योगामृत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सावन माह में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा स्थित महादेव साल धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल ने मेले के दौरान महादेव साल स्टेशन पर 22 ट्रेनों को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि ठहराव पाने वाली ट्रेनों में साउथ बिहार, उत्कल, इस्पात, समलेश्वरी, टाटा एनाकुलम और विभिन्न मेमू ट्रेनें शामिल हैं।
5: के लिए रेलवेज ने यहाँ पे 22 ट्रेनों का टेम्पररी स्टॉपेज दिया है। जो रेगुलर स्टॉपेज है उसके अलावा 22 ट्रेनों की स्टॉपेजेस रहेंगी। स्टॉपेजेस 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक है, जिसमें श्रद्धालु आराम से उतर सकते हैं और रिटर्न के समय वो दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं। वहाँ पे एडिशनल बुकिंग काउंटर्स लगाए जा रहे हैं।
1: रांची में झारखंड राज्य कुश्ती संघ के स्पेशल जनरल बॉडी बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति और भारतीय कुश्ती संघ के नियमों के अनुरूप तैयार नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में सभी 24 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वर्ष 2026 से 30 के लिए संघ के चुनाव कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक में महासचिव रजनीश कुमार ने कहा कि नए बायलॉज लागू होने के संघ का संचालन राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप होगा और जिला इकाइयों में शीघ्र चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में निभा सकती है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। बुजुर्गों और दिव्यांगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का ऐलान, अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में पलाश दीदी कैफे का कारोबार 10 करोड़ रुपए के पार, 2000 से अधिक महिलाओं की आजीविका हुई मजबूत। और राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप झारखंड राज्य कुश्ती संघ के नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, चुनाव का रास्ता साफ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रविंदर गंजू को गिरफ्तार किया है। झारखंड सरकार ने इस पर 15 लाख रुपए एवं NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसके पास से AK-56 समेत अन्य हथियार व गोली भी बरामद किया गया है। रविंद्र पर लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला जिला के विभिन्न थाना में 154 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: आज रविंद्र गंजू जो RCM रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम NIA के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है।
1: वन विभाग द्वारा जिले के चंदवा प्रखंड में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रादेशिक वन प्रमंडल द्वारा इस वर्ष 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 150 ग्रामीणों के बीच धुआं रहित चूल्हा और सोलर लैंप का वितरण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने कहा कि
3: लोग जो है कम से कम अब पेड़ लगाने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि भाई लोगों से मिले, उनको जागरूक करें। और
1: मौके पर उपस्थित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि
4: मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग कम से कम 5 पेड़ लगाएं और पौधों का संरक्षण करें। अनावश्यक पौधों को काटे नहीं, जंगल में आग नहीं लगाएं। महुआ चुनने के क्रम में आग लगा देते हैं, इससे काफी पौधे नष्ट हो जाते हैं।
1: लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड में भवन निर्माण विभाग एवं संवेदक के गठजोड़ से जामडी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण

0: स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसे सेमरबुड़नी गांव में बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बताया जाता है कि सेमरबुड़नी में पूर्व से ही स्वास्थ्य केंद्र है। इस मामले पर सोहर पंचायत की मुखिया अमृता देवी ने उपायुक्त से मिलकर आवेदन दिया है। मुखिया अमृता देवी ने कहा कि
1: जामडी में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनना था उसको यहाँ सेमरबुड़नी में बनाया जा रहा, जबकि वहाँ पूरे माल मटेरियल सब वहाँ गिरा दिया था, दो दिन भी हो गया था, पूरा केसिंग उसे निकाल करके ला करके लोग यहाँ बना रहा है सेमरबुड़नी।
0: लातेहार जिला मुख्यालय में स्थित सीमा सुरक्षा बल की 32वीं वाहिनी द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत ड्राइविंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर समेत अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि
2: गृह मंत्रालय की योजनाओं के तहत हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस इलाके में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर सीख सकते हैं, उनको हम बेसिक सिखलाई कंप्यूटर का प्रदान करें ताकि उनको रोजगार का कोई ना कोई साधन हो।
0: लातेहार जिला मुख्यालय के धर्मपुर में स्थित महिला मॉडल डिग्री कॉलेज की हालत बदहाल है। यहां दो शिक्षक के भरोसे 500 से अधिक छात्राओं की पढ़ाई चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र साहू ने कहा कि
3: यहाँ शिक्षकों की जरूरत है, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई सार्थक पहल दिखाई नहीं दे रही मेरी।
0: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
4: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे जिले में आजकल और प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में संध्या के 7:15 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं का गीत से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बम्बो सुपैसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, उग्र सिंह प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा। ग्राम गेलिय लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश बेसरा, अनु बनमाली बेसरा, पूजा और सिद्ध कुमारी। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा और लवली श्रीवास्तव। औरंगाबाद से राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है इजाजत। आशा भोसले की आवाज है, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आरती बर्मन का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सरायकेला पाड़ापुर दिशाउली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बो, सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरी, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, बेबी और मधु, जयश्री देवी, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन, बड़ा निमरी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार, इन सब की फरमाइश पर आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है जाग उठा इंसान। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं और गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं माहुल टिया सोनुआ झारखंड से, नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदिनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, अनुतनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा झारखंड से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पीनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान। पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, सुहानी महली, हर्षमणि महली, नंदिनी महली, संजय सोरेन, राजीव सोरेन, पार्वती महली, पातोर बंकीरा, डोली बंकीरा। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जाग उठा इंसान का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, यूशु और ताशु। खरसवा दलाई केला से लक्षण सोए, मांगू सोए, मित्रा सोए और ललिता सोए। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमेनी महतो और दीन बंधु महतो। ग्राम पंजौनिया तहसील को चेला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र संसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्य संसोलिया। कुचाई बिदरी से केपी सेठ सोए, दुर्गामती सरिता, रेशमी को राजकुमारी, विशाल मुन्ना सनी। ग्राम सूराबेड़ा से बासी सरदार, कमल सिंह, वीरू सरदार और अंशु। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ज्वेल थिप का ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में एस टी बर्मन का संगीत है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ਨਾਲ ਸਵਯਮ ਹੀ ਘਟ ਪੜੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸੈਨਾ।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। मैं हूं छवि, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म रोटी का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू और प्रतीक कुमार। ग्राम पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय महली, साजीव महली, बिरसा मुर्मू और कमलेश मुर्मू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, लितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। इन सब के फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म रोटी का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म जवानी का ये गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते थे तांबो चौक चाईबासा से दुर्गा चरण सवैया, लेबिया बोदरा, सुखलाल बोदरा। कुचाई इचाहतु से गोलाराम लोवादा, लुदरी लोवादा, सुरती लोवादा, सोमनाथ लोवादा, पूर्णिमा लोवादा, लालमुनि लोवादा और बिंजना लोवादा। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनेकर, धीरज सवासेरे। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान। भटगांव बलौदा बाजार से राम दुलार साहू और नीलिमा साहू। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभिषेक, अनीस और मुन्ना। तो श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। जाते जाते हम आपको अपना पता बता देते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। अब छवि को इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म जान की कसम का ये गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं खरसवा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और भाई एस देहुरी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीव मिका, बलविंदर बीरक, जितेन बीरक और मिका बीरक। दंतरे की छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जान की कसम का ये गीत, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की, कुमार शानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का गीत, अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों में आनंद मिलन के संगीत है। अब इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, गोला बाजार बक्सर से सिद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। इन सब की फरमाइश पर चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंथा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है जब वी मेट। मोहित चौहान की आवाज है, इरशाद कामिल के बोल हैं, संगीत है प्रीतम का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। कुचाई ग्राम इचाहतु से गोलाराम लोवादा लुदरी, सोमनाथ पूर्णिमा लालमुनि बिंजना लोवादा परिवार। ग्राम लोसोदिकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमन महतो परिवार के सदस्य। चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई भाषा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है जन्नत। केके की आवाज है, इस कदर के बोल हैं और प्रीतम का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन कबिनकर और धीरज सवासेरे। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनीत, मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। उदित नारायण और सादा सरगम की आवाजें हैं, मजरूर सुल्तानपुर के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का। इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडिल हारोटी ग्राम से तुलसीदास महतो, मनोरमा, कल्पना महतो, मनमनी महतो और दीनबंधु महतो, बड़ा बाबू सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा प्रकाश, ललित प्रधान, राजकुमार केसरी, किरण केसरी, श्यामदेव नायक और देवेंद्र जी, चक्करधरपुर गांव गेलिए लोहर से बनमाली बेसरा, कुमार बेसरा, बासंती अनु, सिद्ध कुमारी और पूजा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। खरसवा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक, भाई एस देहुरी। एटा रोड गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्य गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू टिंकू और रीना। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सन्नी मधुर। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये गीत। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म जोधा अकबर का ये गीत जावेद अली की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं कुचाई बिद्री से केपी सोई, दुर्गामती, रसरीता, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सुरबेड़ा से बासी सरदार, कमल सिंह, बीरू सरदार और अंशु। राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। चलिए, सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आपको हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंठा। अब आपको सुनवाते हैं क्रिएचर थ्रीडी का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में सोनी कक्कड़ के संगीत पर। इस गीत को सुनना चाहते हैं न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीश अंश, अंशु और मुन्ना। ओल्ड रिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पिली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुड़ी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक क्रांति निकेतन से मंजित गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सुरांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, गादीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बीटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, चलते चलते आपको हम सुनवा रहे हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत। आशा भोसले और अभिजीत की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस बेगम, इशत अकरम, बहू रुबीना परवीन, अरहान बाबू, हमजा बाबू, तैमूर बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था।

0: आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
2: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी। But in our house, it has become regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
3: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
4: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर

0: कर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, इससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
2: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेस्सी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार हैं। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Center to develop over 160-kilometer long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. U.S. military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
3: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that this entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
5: Today the entire opposition, all parties have all walked out, all party meeting in protest because NCPI, which is an unrecognized party, these so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker.
3: Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation, and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia, and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education, and people-to-people exchange.

0: armbands and observed a minute silence to honor the legendary West Indies all-rounder Sir Garfield Sobers, who recently passed away. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of Parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre-long Rameshwar-Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, flash floods following heavy rain claims 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, hosts England set 388 runs target for India in the third and the final ODI at Lord's. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले, जो कल से शुरू हो रहा है, कल कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुश उसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज ओडिशा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जाने चली गई। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान के पासदारा ने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी ओडीआई में मेजबान इंग्लैंड ने भारत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास कल से शुरू हो जाएगा, जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिन पर बहस मुबहसा होगा। मॉनसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवू श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के, एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामाधिकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम

0: आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि NCPI कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने NCPI को इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बायकॉट करार दिया। NCPI के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने ओपोजिशन पार्टियों की स्कूल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी BAC की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहसो मुबाहसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रिवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र नई दिल्ली ज़िले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफ़ा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च जुलूस मुजाहरे और 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकाम के माबेन बिला रुकावट रबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस नई शाहराह से मकामी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे, क्योंकि इस शाहराह की वजह से होटलों, होम स्टेज, रेस्तरां, दस्तकारी की मार्केट्स और सियाहत पर मबनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से 9 इकतसादी मकाम और 5 लॉजिस्टिक्स के मराकज में बाहम रबता होगा, जिससे उड़ीसा के इकतसादी नेटवर्क को इस्तेहकाम हासिल होगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से रजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और खराब सड़क के बावजूद मुतअद्दिद इदारों पर मुश्तमिल एजेंसियां राहत और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और अफसरान को मुतासिरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे को मौखिर करके आज दोपहर जम्मू वापस पहुंच गए। नदियों की दुगजानी की वजह से दर्जनों गाड़ियां या तो पानी में बह गईं या गरकाब हो गईं। मकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव की टीमें मुतासिरा कुनबों को महफूज मकाम पर ले जाने और नुकसान का तखमीना लगाने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड में आज से बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जाने भी जाये हुई है। मौन जिले में अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 9 अफराद हलाक हो गए और बहुत से घर बह गए। नागालैंड की कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली रियासती अथॉरिटी के जॉइंट CEO जॉनी रंगमे ने आकाशवाणी के हमारे नामनिगार को बताया कि 3 खवातीन और 1 शख्स समेत 4 मुतासरीन की लाशें बरामद कर ली गई हैं और बकिया 5 की तलाश की जा रही है। नगीनी पोड़ा में 4 अफराद को, जो मलबे में दबकर शदीद जख्मी हो गए थे, बचा लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि गैर मुतअद्दी अमराज मुल्क में सेहत आम्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निमटने के लिए अवामी सतह पर एक तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। वो आज नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे के सबक सीनियर मुशीर डॉक्टर अखिलेश गुप्ता की तसनीफ अनब्रोकन माई बैटल विद कैंसर एंड द विल टू लीड के इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मोल्दोवा और रोमानिया के सफीर डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने कहा है कि सदर द्रौपदी मुर्मू का इन दो मुल्कों का दौरा तारीखी नौयत का होगा। डॉक्टर महापात्रा ने प्रसार भारती से बात करते हुए कहा कि भारत और मोल्दोवा के दरमियान गर्म जोशी पर मबनी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दौरा एक अहम और तारीखी संग मील साबित होगा जिससे दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात एक वसी तर शराकतदारी में बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकतदार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के बाद दोतरफा इकतसादी शराकतदारी से आइंदा बरसों में ये ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तीन मुल्कों मोल्दोवा शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वो मोल्दोवा पहुंचेंगी। ये किसी भी भारतीय सदर का मोल्दोवा का पहला सरकारी दौरा होगा। इस दौरान सदर जमहूरिया मोल्दोवा की सदर माई सैंडी से मुलाकात करेंगी और वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो मोल्दोवा भारत बालेमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से मुलाकात, एक कारोबारी फोरम से खिताब और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। दौरे के दूसरे मरहले में मोहतरमा मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक शिमाली मकदूनिया में रहेंगी, जबकि अपने दौरे के आखिरी मरहले में वो 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया का दौरा करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले को मनमाना करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मिनी पुष्करना का ने कहा कि वांगचुक को फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के किसी फौरी हुक्म की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स उनकी हालत पर करीबी नजर रख रहे हैं और उनका इलाज मुआवजा उनकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। अदालत वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमू की एक दरख्वास्त की समाहत कर रही थी जिसमें उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। अमरीकी फौज ने आज ईरान पर फजाई हमले किए जिनमें ईरान के नीम फौजी दस्ते सिपाही पासदारा ने इनकलाब IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि यह कार्रवाई उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमलों में ईरान की साहिली निगरानी, फजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि पहली मरतबा उसकी कार्रवाई का खसूसी निशाना IRGC थी जो ईरान के मजहबी निज़ाम में एक ताकतवर इदारा है और मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल रखती है। ईरान ने अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। अमरीकी फौज मुहिम अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भारत की सरकर्दा खातून बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय के तौर पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन की तारीख में ये कामयाबी एक अहम संग मील है। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने सिंधु की इस हुसूलियाबी को तारीखी करार दिया है और कहा है कि इस कामयाबी से कौम को फख्र हासिल हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने पर PV सिंधु को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस कामयाबी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक तारीख साज कारनामा करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि सिंधु ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अजम और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और उनकी ये कामयाबी निहायत अहम है। फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज रात अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा जिसमें दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में अर्जेंटीना का शुमार कामयाब तरीन टीमों में होता है जो 3 मरतबा आलमी खिताब जीत चुका है। लियोनेल मेसी की क्यादत में अर्जेंटीना की टीम ब्राजील के बाद पहली ऐसी टीम बनने की कोशिश करेगी जिसने मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है। ब्राजील ने 1958 और 1962 में लगातार 2 मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा आलमी खिताब जीतने के अजम के साथ मैदान में उतरेगी। मर्दों की क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में खेले जाने वाले 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के तीसरे फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 20 اوور میں بغیر کسی وکٹ کے 109 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ نے مقررہ 50 اوور میں 3 وکٹ پر 387 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایک بار پھر حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو کل سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کی کارکردگی کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائے۔ مرکز اڑیشہ کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا۔ جموں کشمیر کے راجوری اور پنچ ضلعوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر ناگالینڈ میں بھی موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب سے 9 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کی پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔
2: آکاشوانی ہے، لوک سبھا کا مانسون سطر کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کرم میں آج پرستت ہے وشیش پریچرچا، سنسد کے سمکش مدے۔ اس میں بھاگ لے رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی سے پروکتا اور پورو راجیہ سبھا سدسیا سید ظفر اسلام، بھارتی راشٹری کانگریس پارٹی سے لوک سبھا سدسیا سکھدیو بھگت، بھارتی کمیونسٹ پارٹی مارکس وادی سے لوک سبھا سدسیا امرا رام اور عام آدمی پارٹی سے پروکتا انمول پنوار۔ پریچرچا کا سنچالن کر رہے ہیں آنند شریواستو۔
3: نمسکار۔ موسم کی پھوہاروں کے بیچ دلی کے لوٹین زون میں راجنیتک پارا اپنے چرم پر ہے۔ سنسد کا مانسون سطر 20 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک سطر نہیں، یہ لوکتنتر کی دھڑکنوں کا موسم ہے، جہاں ہر آواز معنی رکھتی ہے، ہر سوال ستا کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور ہر جواب دیش کی دشا طے کرتا ہے۔ سنسد کا مانسون سطر، جہاں ایک اور سرکار اپنے ایجنڈے کے ساتھ تیار ہے، قانون سدھار اور نئے فیصلوں کی رفتار لے کر، تو وہیں وپکش سوالوں کی دھار، مدوں کی آگ اور جنتا کی آواز بن کر کھڑا ہے۔ آکاشوانی کے اس وشیش کارکرم سنسد کے سمکش مدے میں ہم کھولیں گے اس سطر کی ہر پرت۔ اس کارکرم میں ہمارے ساتھ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے اپنی بات رکھیں گے راشٹریہ پروکتا اور پورو سانسد سید ظفر اسلام، بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں سانسد سکھدیو بھگت، سی پی آئی ایم کے تیوروں کے ساتھ ہم سے جڑے ہیں سانسد امرا رام، اور عام آدمی پارٹی کی دھاردار آواز بن کر شامل ہو رہے ہیں پروکتا انمول پوار۔ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ ظفر جی، آپ سے شروعات کرتے ہیں، چونکہ آپ ستا پکش کی طرف سے یہاں پر موجود ہیں، سمجھنا چاہیں گے کہ سنسد کا جو مانسون سطر ہے، سرکار اس میں کس رڑنیتی کے ساتھ جا رہی ہے اور کون کون سے مکھ ایجنڈے ہیں آپ کی طرف سے اس سطر کے لیے؟
4: دیکھیں، جہاں تک بھارتی جنتا پارٹی کا سوال ہے اور انڈیا گورنمنٹ کا سوال ہے، ہمارا کوشش یہ رہتی ہے کہ جو لوگوں سے جڑے ہوئے، دیش سے جڑے ہوئے ایسے مدعے ہوں جس کو ایک لیجسلیٹو قانون بنانا چاہیے اور اس سے دیش کا فائدہ اور جنتا کا فائدہ ہو، ایسے مدعے لے کر ہم پارلیمنٹ میں اکثر آتے ہیں۔ اس لیے ہر بار کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے سیدھا ناطا جو ہے جنتا کا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کانگریس پارٹی اور خاص کر جو اپوزیشن کے پارٹیاں ہیں وہ بہت ڈسرپٹیو اپروچ رکھتی ہیں بار بار، اور چاہتی ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی بل پاس نہ ہو پائے۔ لیکن ہمارا ظاہر ہے اپیل ہوگا اپوزیشن پارٹی سے کہ دیکھیے، سرکار چاہتی ہے کہ جو لوگوں کا ایسپریشن ہے، جیسے ویمن ریزرویشن بل، مہیلاؤں کا ایسپریشن، اس کا سمرتھن پراپت ہو سبھی لوگوں سے۔ اسی طرح سے اگر ڈی لمیٹیشن کی بات ہو تو اس میں بھی سمرتھن پراپت ہو، جس طرح سے پچھلی بار کئی لوگوں نے اس وقت نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ لوگوں نے افسوس ظاہر کیا۔ اب سمجھ میں ان کو آیا کہ ایک دیش نیتی ہوتی ہے، دیش کے ہت میں کام ہوتا ہے، سماج کے ہت میں کام ہوتا ہے اور ایک پریوار کے ہت میں کام ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے، بہت لوگوں نے پارٹیاں چھوڑ بھی دی ہیں، اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس بار ایسی کوئی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جیسی کوئی بل جو ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم پورے طور سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ لوگوں کا سمرتھن، اپوزیشن بینچ کا سمرتھن، سب کا سمرتھن ملے گا، اور اس بار ہم اس طرح کے لیجسلیشن کو ایک قانون کے پاس کر کے، بل کو پاس کر کے قانون بنا سکیں گے۔ اسی طرح سے ون نیشن ون الیکشن ایک مدعا ہے، جیسا آپ نے صحیح کہا کہ کوئی گھور اپرادھ کرتا ہوا जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से, और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, न कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे, और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेते, इससे उनसे भी अलग हुए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
3: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
5: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस की नहीं, पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई, जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एप्सॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करें, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या है लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते फिर सरकार भी चुरा लेती है और एसआईआर का जो मुद्दा है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है ना स्वतंत्र है ना इंडिपेंडेंट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बना कर रखा है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों पर रख रहा है आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और हम ये समझते हैं और रही बात गंभीरता की मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
3: सीपीआईएम से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मॉनसून सत्र में उठाने वाली है।
6: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटे बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गाँव पे नमक छिड़कने का काम किया तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
3: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी आपकी जो पार्टी है शिक्षा स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
7: देखिए विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया चढ़ावा चोरी हो गया वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी 18 दिन तक इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की एक फर्जी एफआईआर एक फर्जी एसआईटी का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं इंजन खराब हो रहे हैं कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे उन्होंने लोगों से बात की लोगों ने अपनी समस्याएं बताई तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा ये हंगामा करेंगे ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे यही होता है और यही करते रहेंगे।
3: जफर साहब आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी।
4: देखिए अभी तो एक चर्चा का विषय है जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं, उनके जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खचे लोग वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
3: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
5: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहा है वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था, वो राजनीति है क्या? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इसराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले है, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है, और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं हो और SIT आपने गठन कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना ले, ये कौन क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
3: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मानसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
6: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष। ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने

0: रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई, सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए। हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग।
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है।
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विदिन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं, और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर्स हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है, और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़

0: पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पे भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें है, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयूज थे उनको जिस प्रकार सेल आउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला है। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है, जफर साहब अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल।

श्रोताओं, इन्हीं गजल के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों की रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म जुर्म का ये गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में।

देखो रश्मिता, एक चीज हम जान गए हैं

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना जुर्म फिल्म से गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में, साजन फिल्म से गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ों में, मैंने प्यार क्यों किया से अलका याग्निक और हिमेश रेशमिया की आवाज़ों में, और कार्यक्रम के अंत में आपने सुना मुझसे शादी करोगी फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting.